एफएम 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि है। तदनुसार 18 जून 2026 गुरुवार का दिन है। हमारी आज की प्रातकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया

0: ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते हैं आज दिन भर में हमारे कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।
2: लो बदलो, आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 का समय चिंतन का, 6:15 पर आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 6:45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, 7:20 का समय होगा श्री रामचरितमानस गान का, 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। इसके पश्चात 8:00 दिल्ली से प्रसारण होगा समाचार प्रभात का, 8:15 पर आप सुन पाएंगे मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। इसके पश्चात 9:00 जयपुर से आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 9:10 पर आप सुन सकेंगे देशकान, 9:15 पर लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी, 9:30 पर फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से दिल तक, 10:00 का समय आकाशवाणी मुंबई से कार्यक्रम विविध भारती के कार्यक्रमों का, 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, 12:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर, 1:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 1:05 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत, 2:00 दिल्ली से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार और 2:30 का समय फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने का। इसके पश्चात 4:00 दिल्ली से प्रसारण होगा संदेश टू सोल्जर्स, 5:00 का समय होगा युववाणी का, 5:30 पर जयपुर से प्रसारण होगा धीनेरी बाता का। इसके पश्चात 6:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार, 6:10 का समय होगा देशभक्ति फिल्मी गीत का। इसके पश्चात 6:30 पर आकाशवाणी जयपुर से आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, इसके पश्चात 6:40 पर जयपुर से ही जिले की चिट्ठी और जयपुर से ही आप सुन पाएंगे 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, 7:00 का समय होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम किसान वाणी का और इसके पश्चात 7:30 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत, 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या, 9:00 का समय होगा न्यूज एट 9 का, 9:15 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत, 9:30 पर दिल्ली से प्रसारण होगा कार्यक्रम कंट्री वाइड का। इसके पश्चात रात्रि 10:00 जयपुर से आप सुन सकेंगे राजस्थान दर्शन, 10:30 का समय सुगम संगीत का, 11:00 दिल्ली से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

वो है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। श्रोताओं, ये बात व्यक्ति के कार्य करने के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित है। व्यक्ति अपने जीवन में जब कार्य करता है उसके पश्चात ही वो आगे बढ़ता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति का जन्म इस धरती पर कार्य करने के लिए हुआ है। अगर व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ बैठा रहता है, तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाता है। आप अपने आप में भी ये महसूस करते हैं कि अगर आप चलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो आपका शरीर गतिमान रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप रुक जाते हैं, आराम पसंद ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में आप पाएंगे कि फिर आपसे काम होना मुश्किल हो जाता है। ये बात अगर आप किसी मशीन पर भी किसी भी प्रकार से आजमाना चाहें तो आप बखूबी आजमा सकते हैं। मशीन अगर नियमित रूप से चल रही है तो उसमें किसी प्रकार की परेशानी जल्द से नहीं आती, लेकिन अगर वो काफी समय के लिए रुकी हुई है तो उसके बाद उसको चलाना कई बार मुश्किल हो जाता है। और कई बार जब उसको चलाते हैं तो ऐसे में पाते हैं कि उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई खराबी पैदा हो गई, यानी कि जो कुछ चलने के लिए बना है अगर वो रुक जाता है तो वो उसकी मृत्यु है। इसलिए अगर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी सफलता के सोपान पर पहुंचना है, कहीं पर भी अपने आप को उसे साबित करना है, जो कुछ वो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके पाना चाहता है, उन सब के लिए ये आवश्यक है कि वो उस कार्य से संबंधित जो भी आवश्यक हो वो जी तोड़ मेहनत के साथ करे। आप देखते हैं कि ज्यादातर आज के समय में लोग आराम पसंद करते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी अगर बात की जाए तो युवा पीढ़ी भी चाहती है कि उसको कोई ऐसा काम मिले जो एक जगह बैठकर टेबल कुर्सी पर आराम से किया जा सके, ऐसा कार्य जिसमें शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा हो उसको वो नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि शरीर आराम में रहे, लेकिन आप पाएंगे कि शरीर अगर आराम में रहता है तो उसका विकास भी रुक जाता है। अगर आप एक अच्छा शरीर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जब व्यायाम करते हैं, किसी भी प्रकार से आप शरीर को इस प्रकार से मेहनत के साथ जोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी मांसपेशियों में विकास होता है, बदलाव होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखते हैं तो शरीर का विकास रुक जाता है। यानी कहने का सीधा स्पष्ट अर्थ यही है कि अगर आप अपने जीवन में पूरी तरह से जलोगे तो निखर के आप निश्चित रूप से सूरज बनोगे। चिंतन में इतना ही, और अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष है अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

रुद्रावतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है।

श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम राजकुमार। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

पूरब और पश्चिम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। इसे लिखा इंदिवर ने और इसे संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

रात और दिन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, मन्ना डे की आवाज में।

एसडी बर्मन का संगीत, नीरज के बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम प्रेम पुजारी।

श्रोताओं, दरिया में डूबने वाला ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम कहानी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज, गीत लेखन आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आवाज थी लता मंगेशकर की और संगीत था सतीश भाटिया का। FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हो चुके हैं। समय कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। नमस्कार चूरू का आज का अंक लेकर मैं हूं आपके साथ आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

चुदों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चुरू एफएम चुरू से। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज के दिवस की विशेषता की। तो आज 18 जून है, तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और बलिदान की मिसाल के रूप में याद की जाती है। उनकी पुण्यतिथि को आज ही के दिन शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अद्भुत वीरता दिखाई और युद्धभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने अपने आप को एक सशक्त भारतीय नारी के रूप में, जो अपने देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, इस छवि को उन्होंने प्रस्तुत किया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। बचपन से ही वे साहसी और आत्मविश्वासी थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखी। विवाह के बाद भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के सामने अदम्य साहस के साथ मुकाबला किया। उनका संघर्ष केवल राज्य के लिए नहीं था, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था। 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। उनके बलिदान ने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस, आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। वे केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि भारत की नारी शक्ति और वीरता की प्रतीक थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति आज भी उनके अद्भुत साहस को याद करती है और ये परिचायक हो गई है रानी लक्ष्मीबाई की। महारानी लक्ष्मीबाई का

बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश प्रेम, साहस और कर्तव्य की प्रेरणा देता रहेगा। और आज उनके पुण्य तिथि पर हम उनको नमन करते हैं। आज के दिन की विशेषता में आपको बताएं कि आज ही के दिन विश्व सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस भी मनाया जाता है, यानी भोजन, संस्कृति और प्रकृति का सम्मान। हर वर्ष 18 जून को विश्व सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपराओं, प्रकृति और भविष्य से जुड़ा हुआ है। सतत गैस्ट्रोनॉमी, इसका अर्थ है ऐसा भोजन और भोजन प्रणाली अपनाना जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके, स्थानीय किसानों को बढ़ावा मिले और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सके। आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण भोजन व्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में सतत भोजन पद्धतियां अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग, भोजन की बर्बादी को कम करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना सतत गैस्ट्रोनॉमी के महत्वपूर्ण भाग है। भारत जैसे देश में सतत गैस्ट्रोनॉमी की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हमारे पूर्वज मौसम के अनुसार भोजन करते थे। राजस्थान की बाजरे की रोटी, दाल, छाछ, कैर सांगरी जैसे पारंपरिक व्यंजन न केवल स्वादिष्ट थे, स्वादिष्ट हैं, बल्कि स्थानीय जलवायु और संसाधनों के अनुसार पूरी तरह से उपयुक्त भी है। इसी तरह भारत के अलग अलग क्षेत्रों के पारंपरिक भोजन में प्रकृति और स्वास्थ्य का संतुलन दिखाई देता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि वे भोजन का सम्मान करें, उसकी बर्बादी रोकें। एक किसान से लेकर रसोई तक हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि हम जरूरत के अनुसार भोजन लें, स्थानीय उत्पाद जो भी होते हैं उनको खरीदें और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, तो पर्यावरण को बचाने में हम अपना सार्थक योगदान दे सकते हैं। सतत गैस्ट्रोनॉमी हमें यह संदेश देता है कि स्वाद और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। हमें ऐसी भोजन संस्कृति अपनानी चाहिए जो स्वास्थ्य वर्धक होने के साथ साथ धरती के लिए भी बेहतर हो। तो आइए विश्व सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर संकल्प लें कि हम भोजन का सम्मान करेंगे, उसकी बर्बादी रोकेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

0: चुरू से कार्यक्रम नमस्कार चुरू। श्रोताओं, आप रेडियो सुनते हैं, ये आपके लिए है। इसी प्रकार से हमारे जो भी सार्वजनिक स्थल होते हैं वो भी हम सबके लिए होते हैं। हमारे भारत में बहुत से ऐसा संस्थान है, और सिर्फ भारत की ही बात क्यों करें, पूरे विश्व में जो जो देश हैं उन देशों में देशों के कुछ संस्थान होते हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का उस पर अधिकार होता है। जिस प्रकार से हमारा अधिकार होता है, उसके साथ ही हमारी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। हम जहां पर अधिकार की बात आती है तो अपना अधिकार साबित करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने की, वहां हम पीछे हो जाते हैं। तो ये बात कहां तक उचित हम ठहरा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में देखने में ये आता है कि सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति घूमने जाता है, चलता है, और अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो वहां पर इन दिनों बहुत से लोग घूमने जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत जहां पर मौसम बिल्कुल साफ स्वच्छ, प्रकृति के मनोरम दृश्य वहां देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां भी अगर देखेंगे तो लोग बाग प्लास्टिक की पानी की बोतलें, प्लास्टिक के पैक्स, चिप्स वगैरह, इस तरीके के जो भी खाद्य पदार्थ लेकर जाते हैं और वहां पर उनको छोड़कर आते हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने ऐसे स्थलों को साफ रखें? वहां पर हम जा सकते हैं, अगर हमें वहां जाने से कोई रोके तो हम अपने अधिकार की बात करने लगते हैं कि हमें पूरे भारत में जहां भी जाएं घूमने का अधिकार है, और ये अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है। तो ऐसे में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस अधिकार के दूसरे पहलू में दायित्व भी आता है, जिम्मेदारी भी आती है। जब हम जिम्मेदारी या दायित्व निभाने में पीछे रहते हैं तो फिर हम अपने अधिकार को बताने में आगे कैसे रह सकते हैं? ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना है कि हम जागरूक बने और अपने दायित्व को समझें, जो किसी भी सार्वजनिक स्थल, पर्यटन स्थल, प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए है जो देश की संपत्ति है, और वो हमारी भी सार्वजनिक संपत्ति है। आप सुन रहे हैं नमस्कार चुरू।
1: कहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे, तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं नमस्कार चूरू। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसमें पहले सुनेंगे समाचार प्रभात 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल

0: होंगे जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियू में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश

0: उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: We have a huge pool of talent.
4: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
5: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर IIT निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
8: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
9: So we are very thankful that Modi ji aaye humse mile.
7: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
10: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage.

श्रोताओं, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम सुर संगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चुरू से, और ये आवाज है जगजीत सिंह की। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जयपुर से, जिसमें आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार 9 बजे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक

0: योजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और एआई आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि

0: उनको आमंत्रित कर रहे हैं वो आए और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
1: और अब मौसम। राज्य में पिछले दो तीन दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय 9:10 हो चुके हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी।

श्रोताओं, ये लोक रचना आपने सुनी भंवरलाल सोलंकी और पाठी की। अगली रचना भी इसी आवाज में।

श्रोताओं, ये लोक रचना आप सुन रहे हैं हमीरा राम रायका एंड पार्टी की आवाज में, और इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम दिल से दिल तक। श्रोताओं, आपको पता है ये कार्यक्रम होता है आकाशवाणी चूरू के फेसबुक पेज पर। आपके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए जो कमेंट्स दिए जाते हैं उनको हम इस कार्यक्रम में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, और इस क्रम में सबसे पहला कमेंट हमारे पास है हमारे नियमित श्रोता चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला अनेजा का। लिखते हैं, कमियां सब में संभव है, दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है। हम दूसरों की कमियां न देखें, इससे हम कमजोर हो जाएंगे। वहीं दूसरों में विशेषताएं देखेंगे तो आप विशिष्ट हो जाएंगे। जीवन कोरे कागज की तरह है, आप सुनहरे रंग भर के इसको खूबसूरत बना सकते हैं। मुस्कान, शालीनता, मधुर वाणी, आत्मविश्वास, आपसी प्रेम, सकारात्मक सोच और मन की शांति, ये वो रंग हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन इंद्रधनुष की तरह हर मन को लुभा सकता है। बहुत खूब लिखा है सतीश जी ने, कमियां सब में होती है, लेकिन अगर हमें किसी से कोई भी रिश्ता रखना होता है तो हमें उन कमियों को दूर करके और उसमें जो अच्छाई है उसको ढूंढ कर उसके माध्यम से उस रिश्ते को पुष्पित और पल्लवित करना चाहिए, तभी वो रिश्ता निभ सकता है। वो रिश्ता चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अगर हम सिर्फ कमी देखते हैं तो कमी में सिर्फ कमी ही हमें प्राप्त होती है, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति की ही बात करें तो उचित नहीं है। दुनिया में आप किसी भी स्थिति परिस्थिति किसी को भी देख लो, सब कुछ अपने आप में परफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कमी निकालने वाला निकाल देता है। कहा भी गया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसे में हमें उस प्रकार के लोगों में अपने को शामिल न करते हुए बल्कि इस प्रकार के लोगों में शामिल करना चाहिए जो कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई ढूंढता हो, न कि बुराई। बहुत शानदार आपने विचार लिखे हैं, और अब प्रस्तुत है आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा

0: मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम दिल से दिल तक। कार्यक्रम में अगला कमेंट भेजने वाले ये श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लिखते हैं, युवावस्था में अरमानों, भावनाओं और उमंगों की नवीनतम कल्पनाएं लेकर हर युवा मन विवाह के बंधन भी बंद कर अपने जीवन साथी के साथ एक नई दुनिया की कल्पना संजोए होता है और हर युवा विवाह के पूर्व अपने कुंवारे सपने में अपने जीवन साथी के बारे में कुछ गुनगुनाते नजर आते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। इस कार्यक्रम में अगला कमेंट लिखने वाले श्रोता है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ लिखते हैं, आज की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटकती जा रही है। कुछ युवा तो सोशल मीडिया के दुष्प्रचार में की चपेट में आते जा रहे हैं, कुछ युवा नशे की लत से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमारा समाज हमारे भारतीय संस्कार के विपरीत युवा पीढ़ी जा रही है। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार और समाज के लोगों ने वृद्ध आश्रम खोलकर हमारे भारतीय संस्कारों पर कलंक लगा दिया है। हमारे भारत में ऐसे संस्कार कहां से उत्पन्न हुए, ये सोचने की बात है। बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा औलाद होती है, औलाद रास्ता भटकती जा रही है और बुढ़ापे का सहारा वृद्ध आश्रम बनता जा रहा है। ये समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सी कठिन परिस्थितियों से गुजर कर पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़े करते हैं और जब वो औलाद सहारा बनने लायक होती है तब रास्ता भटक जाते हैं। नशे की लत की ओर बढ़ती जा रही हमारी युवा पीढ़ी और समाज को जागना होगा, विचार करना होगा कि हम और हमारा समाज कहाँ जा रहा है। ये बिल्कुल सोचनीय बिंदु है, इसके बारे में सोचना चाहिए। युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, ये न सिर्फ युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए, इसके साथ ही साथ उनके पहले की जो पीढ़ी है उनको भी सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्थितियां रही कि वो जो संस्कार उनको दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दे पाए। आज जो भी इस बारे में सोचता है उसको इसके बारे में विचार करके और किस प्रकार से इसको अपनी आने वाली पीढ़ियों तक हम बता सकते हैं, किस प्रकार के हमारे संस्कार रहे और किस प्रकार ये देश आज तक अपने संस्कारों के बल पर चलता आया है, इसकी जानकारी हमें अपने इतिहास से मिलती है। और ऐसे में हमारी युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में बताना चाहिए।

और युवा जो सुन रहे हैं उनसे भी हमारा ये निवेदन है कि अपने गौरवमयी इतिहास को आप जानिए कि आप क्या थे और कौन से पूर्वज आपके पूर्वज थे जिनके माध्यम से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनके क्या संस्कार थे, क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी संस्कृति थी, और आज हम किस संस्कृति में जी रहे हैं। ये आकलन, ये कंपैरिजन हमें निश्चित रूप से करना होगा। अगला कमेंट भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरकल सुरलकर रतनमाला। लिखते हैं, सकारात्मकता एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन में उत्साह और आशा का संचार करती है। सकारात्मक सोच से कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती है। ये ऊर्जा हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करता है। सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से सकारात्मकता बहुत आवश्यक है और सकारात्मकता ही रखनी चाहिए। नकारात्मकता से जब कुछ सकारात्मक प्राप्त नहीं होता है तो फिर नकारात्मकता रखने से क्या फायदा? अगर हम फायदे और नुकसान की ही बात कर लें तो सकारात्मकता में जब फायदा है तो फिर नकारात्मकता क्यों? वेद प्रकाश मिठा ये कमेंट लिखते हैं हमें नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से, और इनके साथ है अलका मिठा। लिखते हैं कि परिवार के साथ है धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ है धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए उसके मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपने सही लिखा है मिठा जी। और इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, या फिर हम इसमें अपनी ओर से जोड़ दें कि कितनी भी बुरी हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मन की स्थिति अगर सही है तो कम पैसे भी बढ़ जाएंगे, और मन की स्थिति अगर खराब है तो ज्यादा पैसे भी घट जाएंगे। इसलिए मन की स्थिति सबसे आवश्यक। उत्तम सिंह लिखते हैं कोह का भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष और नंदिनी धम्मा ग्राम सुखरी कला से, ये इनके साथ है अमित जंघेल। हमारा निवेदन ये है कि अगर आप कमेंट करते हैं तो आप अपनी ओर से कमेंट कीजिए, और जिनके नाम आप लिखना चाहते हैं उनको भी बताइए, वो अपनी ओर से फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि फेसबुक आजकल लगभग प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है और जनरली प्रत्येक व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है, तो अलग अलग श्रोताओं के आपके जान पहचान के नाम लिखने के बजाय आप उन्हीं को बताइए कि आप खुद कमेंट कीजिए। अगले श्रोता है सतीश रघुवंशी, और ये लिखते हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। और इसी क्रम में ये श्रोता है विष्णु मिस्कीन रीतिका मिस्कीन वाणी आरव चंद्रकला काशीनाथ गणेश सोनी आरोही और प्रियांशी दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि दुर्घटना एक पल की लापरवाही का परिणाम होता है, सावधानी सतर्कता और नियमों का पालन ही सुरक्षा सुरक्षित यात्रा की पहचान है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा जिम्मेदारी का व्यवहार करें, सुरक्षित रहें, सजग रहें, रेलवे नियमों का पालन करें, क्योंकि छोटी सी सावधानी किसी अनमोल जीवन को बचा सकती है। बिल्कुल सही है, सुरक्षित रहें, सजग रहें, और सिर्फ रेलवे नियम नहीं, यातायात के जो भी साधन है उन सब के जो नियम है उन सब का पालन करें। सुदर्शन शाह और इनके साथी जो हैं वो हमें

इनके जवाब में दिख नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से ये लिखते हैं, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला, बेन और राजेंद्र लिखते हैं, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया मिलना आवश्यक होता है, लेकिन हम इसमें कई बार इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं जिससे हमें उस रिश्तों की को जोड़े रखने में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई बार स्वयं को काफी परेशान भी होना पड़ता है। इसलिए कई जगह पर क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत न देना ही सबसे सही तरीका माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्रिया की प्रतिक्रिया हर जगह आवश्यक नहीं है। जगह देखनी चाहिए कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे क्रिया की प्रतिक्रिया की फिर प्रतिक्रिया बहुत भयंकर होती है, इसलिए क्रिया तक ही रुक जाए, उसकी प्रतिक्रिया न दे। सही राम नगर पिथी सर चूरू से हरे सिंह नायक, दुर्गा राम बुडानिया, सोनू मोनू रवि विवान लक्षिता नायक ये लिखते हैं सही राम नगर पिथी सर से। हर सफल इंसान के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा होता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता, उसे भी ठोकरें लगती है, असफलताएं मिलती है, लेकिन रुकता नहीं और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। यकीनन जीवन में संघर्ष अक्सर करना पड़ता है, बहुत से लोगों को नहीं करना पड़ता है, लेकिन जिनको करना पड़ता है उनको अगर सफलता चाहिए तो संघर्ष करना ही होगा। हमारे अगले श्रोता जो हैं वो गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से लिखते हैं, अनूप सिंह नाथावत और समस्त परिवार, जैसी करनी वैसी भरनी, एक ही लाइन में इन्होंने अच्छा इन्होंने टाइटल सॉन्ग लिखा है। देखिए, इस कार्यक्रम में हम पसंद के गीत सुनवाने का ये कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ हम आपको इस कार्यक्रम में आपके कमेंट पढ़कर सुनाते हैं। एडवोकेट वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त को प्यार भरा सलाम, बड़ी सोच रखने वाले को कभी भी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका लक्ष्य खुद ही उन्हें अलग पहचान दिला देता है। जी हाँ, सब अपनी पहचान खुद ही स्थापित करते हैं। हमारी ये श्रोता है बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद और साथी, और इसी क्रम में ये श्रोता है अरुण पवार गांव रामगढ़ शेखावटी जिला सीकर से, और ये कमेंट शामिल करने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसी क्रम में अगले जो श्रोता हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें कमेंट लिखा है वो श्रोता हैं हमारे सोमदत्त नाभा, महेश गेट नाभा, जिला पटियाला पंजाब, इनके साथ है कैरव ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। और इसी क्रम में अगले श्रोता है सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा और शशांक बाघमरे। और इसी क्रम में हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा, हनुमान बोड़खे और उत्तम, और मेरिट कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन्होंने भी कार्यक्रम में अपना कमेंट लिखा है। और अगले श्रोता है नीतीश कुमार देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से, लिखते हैं रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, कभी शब्दों से, कभी अपेक्षाओं से, कभी गलत फहमियों से उसमें दरारें आ जाती है, लेकिन हर टूट का अंत नहीं होता, क्षमा वो धागा है जो बिखरे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है। किसी की गलती को सही ठहराना नहीं बल्कि अपने मन को कड़वाहट से मुक्त करना है। जब क्षमा करना चुनते हैं तब रिश्ते केवल बचते नहीं बल्कि और भी गहरे, मजबूत और सुंदर बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही लिखा है, क्षमा करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये बात भी ऐड करना चाहेंगे कि सामने वाला भी क्षमा मांगने वाला और क्षमा चाहने की चाहत रखने वाला होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था होती है, सामने वाला क्षमा मांगे और दूसरे

पक्ष जिसे क्षमा मांगी जा रही है वो उसको माफ करे, तब बात परफेक्ट बनती है, एक तरफा नहीं होता है। पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा, अनमोल जुनेजा, साहिबा, और इसी क्रम में कस्बा सैंथल जिला बरेली से ये हैं फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन, तासिफ हुसैन, मोहम्मद अजहान, अलमीर बशर, और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से श्रोता हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अब इस कार्यक्रम में जितने भी कमेंट हमें हमारे श्रोताओं ने भेजे उनको हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया, और अब इस कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी चूरू से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक, और हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार
3: है? आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको, और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत। करेक्ट
1: जी। हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था
2: वो? ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम। और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं।
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुलीवाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे, और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा।

0: मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
1: बस ये
0: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होता है।
1: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता।
0: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
1: जी जी।
0: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
1: रास्ते में है अभी तो।
0: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
1: पढ़ाई मिलती कैसे यार?
0: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था।
0: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
1: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
0: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका मिले आपको तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा। मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूँ, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
0: हाँ वो है।
1: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी जाता ना कि सच को हम उसका सामना करने वाला कतराते हैं, कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
0: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, तो एक गाना तो बन गया।
1: कौन सा?
0: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
1: क्या बात। बहुत खूबसूरत गाना है, और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
0: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
1: आइए सुनते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं

0: क्या बनूंगा।
1: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
0: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में। अच्छा। ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। पर अगले दिन शाम को हम लोग गए तो मैं अब ढूंढ रहा हूँ जगह कि कहाँ मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
1: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
0: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी मुझे, सिर्फ ये था यार मैं क्यों
1: कहाँ फंस गया,
0: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है वहां से वो कब पैदा हो गया उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा।
0: कुछ होना, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था। हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में। वहीं पे कुआं था, वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: बीजी भाई अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाकया हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
1: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे ही किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
0: विजय भाई बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
1: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था मुझे, तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन हैं, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस बात।

0: छोटा छोटा रोल मिलने लगा। फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया। तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे। और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में, बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें। तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम। मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपिटरी चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था और उनको बड़ा पसंद आया। तो मुझे उन बुलाया रेपिटरी में कि सुनो तुम रेपिटरी ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया। मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे। 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6×3=18,000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया। बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं क्या अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है, मुझे पता नहीं। अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, पर जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने, यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लेते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का होता, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया, तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह होगी 4,000, तो 12×48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया। मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया, और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रेपिटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: M.K. रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, D.R. अंकुर साहब, बजाज साहब, B.M. शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार, चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है। तो
1: विजय भाई, अभी मौका है और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे। जी,
0: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना

0: एक लड़की भीगी भागी सी,
1: चलती का नाम,
0: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
1: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपए महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
0: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था, अकाउंट्स की पार्ट टाइम,
1: ये जरूरत थी एक।
0: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हो ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
1: अभी भी?
0: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं, जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है, तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
1: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
0: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि, ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब, मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई, एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
1: जी।
0: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूँ, जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में, दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया, मॉनसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है, इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे न मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूँ,
0: आपसे मिला नहीं, और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि, हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में।
1: तो मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो?
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी, तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं मतलब किससे यार कि क्या, तो मैंने कहा मीरा नायर जी, ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गया मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए, बुलाया नहीं किसी ने, काफी समय बीत गया मतलब 1.5-2 घंटा, मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए, तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग, कि एनीवे तो थक गई थी काफी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी, चाय पियेंगे? मैंने हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में, उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन, और
1: आपसे कौन सा वही जो जिस करेक्टर को आप वही कर पाए, उसी के
0: उनके पास थी और मैंने कर दिया, बैठे रहे बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ,
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये,
0: हाँ ये सब बताया तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ, और ये सारी बातें भी बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है तो, लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं, तो वैसे ही एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कई कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने दिया यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ तीन लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वो वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा वो तो। मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए, मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं, और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब और करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको
0: कि नहीं दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था, उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था, भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी,
1: भोपाल एक्सप्रेस,
0: हाँ ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला। और
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी, और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी,
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म। मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम, ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है, कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में,
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं।
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात
1: कही तो बजाय

0: मानसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना, बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानेंगे कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी, जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ, दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें वो, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ, कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहाँ पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है, कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना है। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है, उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप, वो क्या चीज है जो रोकती है?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी, शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है, सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग,
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि, जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बट आप फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है, हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा,
0: विजय भाई कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लापता, इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज वेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
0: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूँगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग पी के ए नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के मैं

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।

0: सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। राजस्थानी लोक रचनाओं का दैनिक कार्यक्रम माटी के स्वर प्रसारित किया जाएगा। माटी के स्वर कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार होंगी शकुंतला भाटी। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रिले करेंगे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण किया जाएगा दिन में 1:05 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सही संस्थान का चयन करने में बरते सावधानी और जुटाएं संस्थान की सही सही जानकारी, बढ़ते बच्चों के साथ बने उनके मित्र और संभाले उनके कदमों को। एक और चर्चा होगी नन्हे के बचपन से करें उसमें स्वस्थ आदत डालने की शुरुआत। दिन में 2 बजे Midday News और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तराने नए पुराने फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 2:30 पर। संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम शाम 4 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इस कार्यक्रम के साथ ही हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5 बजे से। इसमें फेसबुक कमेंट पर आधारित कार्यक्रम होगा बातें रेडियो की। चर्चा के विषय रहेंगे सतत पाक कला दिवस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहादत दिवस, धीनेरी बाता। ये कार्यक्रम शाम 5:30 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रिले किया जाएगा। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। देशभक्ति फिल्मी गीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं शाम 6:10 से। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रिले करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से। इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान कॉल सेंटर। इसी कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बाजार भाव, MSP, मौसम की जानकारी, कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा के अलावा सुन सकते हैं कुछ राजस्थानी लोकगीत और लोक भजन। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:30 से हमारे केंद्र से। हमारे केंद्र से ही रात्रि 8 बजे से आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं आज रात 9:15 से। कंट्री वाइड यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समय रहेगा रात्रि 9:30 का। आज रात 10 बजे राजस्थान दर्शन कार्यक्रम हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से रिले करेंगे। रात्रि 10:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। सभा के समापन में रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो यह था हमारी इस सभा में और सायंकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11

कार्यक्रम की शुरुआत में यह है मोहम्मद रफी और साथी, फिल्म का नाम महल, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

हम तुझे ढूंढ लेंगे, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में महल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था लेडीज़ टेलर। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अंतराल के बाद चित्रपट संगीत में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे हैं फिल्म गंगा और सूरज में। शब्द रचना असद भोपाली की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जिसे इश्क का हो दावा मेरे सामने तो आए। मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप गंगा और सूरज फिल्म का गीत सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने, संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये हैं आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथी फिल्म कर्मयोगी में। शब्द रचना वर्मा मलिक की और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की।

मजाल तुम मुझसे करे सवाल, तेरी छुट्टी करा दूं, तेरा तख्ता उड़ा दूं, अरे बे मौत ना मर तो अपनी ही फिक्र कर, बुरा हर काम मेरा कयामत नाम मेरा, मैं चुटकी से मचल दूं, मैं जूते से कुचल दूं, जुल्म से मेरा रिश्ता मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, नहीं कोई मेरा सानी, तू मांगे गाना पानी, हो काला नाग हूँ मैं तो जलती आग हूँ मैं, मिटा कर खाक कर दूं, जला कर राख कर दूं।

तुम नहीं या हम नहीं। कर्मयोगी फिल्में आप सुन रहे थे आशा भोसले, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और साथियों को।

आपसे प्यार हुआ, आबरू फिल्म के गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था जीएल रावल ने, संगीत रचना थी सोनिक ओमी की।

जितनी हसीन हो तुम उतनी ही बेवफा हो। मोहम्मद रफ़ी की सुरीली आवाज़ में मंगू दादा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था अख्तर रुमानी ने, संगीतकार थे सी अर्जुन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

जा देखा तेरा वादा, हाय रे तेरा वादा। महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, उषा खन्ना और साथियों की आवाज़ में साजन की सहेली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। संगीत रचना थी उषा खन्ना की। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से।

कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम हाय। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गए दो भाई फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओ, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी

0: पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोईता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोईता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोईता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें

से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी है।

0: यहाँ ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो हा? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो
0: हा?
1: मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं

0: मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, और चिड़िया

0: भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना।

0: ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हैं? बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
0: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़े
0: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चुरू केंद्र से किया गया। FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चुरू केंद्र है।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 12:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है राजस्थानी लोक रचनाओं का हमारा दैनिक कार्यक्रम माटी के स्वर। माटी के स्वर कार्यक्रम में हमारी आज के कलाकार हैं शकुंतला भाटी

0: कार्यक्रम माटी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे शकुंतला भाटी और साथियों की गाई हुई कुछ राजस्थानी लोक रचनाएं। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन का ठीक एक बजने वाला है। अब आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिक

0: प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और आरएसी के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेर बदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ईआरपी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ओपीडी के साथ साथ डे केयर, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSSI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग और जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का स्वागत है उनके अपने प्रोग्राम महिला जगत में। और आज मैं हूँ आपके साथ माया, तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हम आपसे चर्चाएं तो बहुत सारी करेंगे, पहले आपका करवाते हैं मनोरंजन, उसके बाद खूब सारी आपसे बातें व चर्चाएं करेंगे।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के।

0: विकास के, जन कल्याण के।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: विराम के बाद बात करते हैं बहनों, अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए सही संस्थान का चयन करने में बरते सावधानी और जुटाए संस्थान की सही जानकारी। बिल्कुल बहनों सही है, क्योंकि आज का युग है वो शिक्षा और ज्ञान का युग है। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बहनों, बल्कि ये हमें हमारे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन में सफलता की आधारशिला बन चुकी है। विशेष रूप से जो उच्च शिक्षा किसी भी विद्यार्थी के जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण होती है जो उसके भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित करती है। ऐसे में माता पिता और विद्यार्थियों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह उच्च शिक्षा के लिए किसी संस्थान का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि कई संस्थान ऐसे होते हैं जैसे हजारों विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, तकनीक संस्थान हैं, जो संस्थाएँ संचालित हो रही है। इनमें से कुछ संस्थान तो बहुत अच्छे जो उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि कुछ केवल आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से विद्यार्थियों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए केवल प्रचार प्रसार को देखकर किसी संस्थान में प्रवेश लेना उचित नहीं है, क्योंकि संस्थान की गुणवत्ता, मान्यता, शिक्षण व्यवस्था और रोजगार अवसर और अन्य सुविधाओं की सही जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है बहनों। और उच्च शिक्षा का महत्व तो विद्यार्थियों की विशेषज्ञता प्रदान करती है, यह उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में दक्ष बनाकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। उस शिक्षा से व्यक्ति में तार्किक सोच है, नेतृत्व क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, सामाजिक जिम्मेदारी का विकास भी बढ़ता है। और आज की जो प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं है, तो हमें उच्च शिक्षा के उसकी गुणवत्ता की पहचान है वो जरूर करनी चाहिए, तभी इसीलिए संस्थान का सही चयन भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और सही संस्थान का चयन है वो हम कई बार क्या होता है कि सही संस्थान का चयन नहीं करते हैं, बच्चे को डाल देते हैं, इससे क्या है हमारा समय और पैसा और दोनों चीज़ बर्बाद हो जाती है। किसी भी संस्थान का प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण साल बिताते हैं। यदि संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देता है तो समय, धन और ऊर्जा तीनों का नुकसान हो जाता है। तो सही संस्थान चुनने से क्या हमें कई सारे फायदे होते हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो प्राप्त होती है, हमारे बेहतर करियर के जो अवसर है वो मिलते हैं, व्यक्तित्व विकास वह वो होता है, और रोजगार की संभावनाएं वो और ज़्यादा बढ़ती है, उच्च अध्ययन और शोध के अवसर भी प्राप्त होते हैं, और उद्योगों और संस्थानों में बेहतर संपर्क भी बनता है। संस्थान की मान्यता की जांच भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उस शिक्षा संस्थान का चयन करते समय सबसे पहले उसकी मान्यता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए हमें, कि जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद है, या राष्ट्रीय मूल्यांकन या सत्यापन परिषद है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है और भारतीय नर्सिंग परिषद है। यदि कोई संस्थान संबंधित नियामक संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहाँ से प्राप्त डिग्री भविष्य में रोजगार या उच्च अध्ययन के लिए मान्य नहीं हो सकती है, तो हमें ये बात भी जरूर ध्यान रखनी है। और संस्थान की प्रतिष्ठा और शैक्षणिक स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि अलग अलग जगह शिक्षा की गुणवत्ता है वो अलग अलग है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस शिक्षा संस्थान चुनते समय ये जानना बहुत जरूरी है बहनों कि वहाँ पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है, और पाठ्यक्रम कितना अध्ययन है, वहाँ की जो इंटर्नशिप है और प्रोजेक्ट कार्य उपलब्ध है या नहीं, कौशल विकास पर कितना ध्यान दिया जाता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है या नहीं, ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए संस्थान का चयन करना चाहिए। और शिक्षकों की योग्यता है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी संस्थान से

सबसे बड़ी पूंजी है उसके शिक्षक, और योग्य और अनुभवी शिक्षक ही विद्यार्थियों का भविष्य वो संवार सकते हैं। तो संस्थान का चयन करते समय हमें योग्य शिक्षकों की भी शैक्षणिक योग्यता है वो देखनी चाहिए, शोध कार्य और प्रकाशन भी देखना चाहिए, शिक्षण का उनको अनुभव कितना है, उद्योग अनुभव कितना है, विद्यार्थियों के प्रति उनका मार्गदर्शन करने का तरीका है। अच्छे शिक्षक विद्यार्थियों को केवल विषय ज्ञान ही नहीं देते बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। तो बहनों हमें ये जांचें कि ध्यान रखें कि उस शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन जब हम जहाँ भी जाएं तो हम हर चीज़ का क्या कहें जानकारी प्राप्त करके ही जाएं। कई बार किसी दिखावे में या प्रचार प्रसार के बढ़ावे में देखकर हम उस संस्थान में चला जाते हैं तो हमारी ऊर्जा, धन और समय दोनों तीनों चीज़ें बर्बाद हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण संस्थान का हमारे बच्चों के लिए चयन करना चाहिए, और बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन एक अच्छा वो भी जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षण वातावरण विद्यार्थी के समग्र विकास में सहायता करता है। संस्थान में उपलब्ध जो सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण करें, क्योंकि आधुनिक कक्षाएं हैं या नहीं, पुस्तकालय हैं, प्रयोगशालाएं हैं, कंप्यूटर सेंटर है, इंटरनेट की सुविधा है, खेल के मैदान है, छात्रावास है, चिकित्सा सुविधा है, सुरक्षा व्यवस्था कितनी है। ऐसे संभव हो तो स्वयं संस्थान का भ्रमण करें और सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन है वो जरूर करें, क्योंकि अगर यदि विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है तो छात्रावास की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी हमें देखना है, क्योंकि अगर हमें बच्चे को वहाँ छोड़ना है तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण, खान पान है, इसकी व्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना है, और वहाँ की सब साफ सफाई है, भोजन की जो गुणवत्ता है, सुरक्षा गार्ड है, सीसीटीवी की निगरानी है, चिकित्सीय सहायताएं हैं, और छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण है, वो ये सब बातें हमें देखनी है, क्योंकि विशेष रूप से जो बालिकाएं की शिक्षा के लिए सुरक्षित परिसर अत्यंत आवश्यक है। रही बात हमारी फीस की, तो उस शिक्षा पर काफी फीस का काफी खर्चा आता है बहनों, इसलिए संस्थान का चयन करते समय फीस संरचना को अच्छे से तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन फीस है, छात्रावास शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, पुस्तक व सामग्री का खर्चा है, परिवहन का व्यय है या अन्य अतिरिक्त शुल्क है। कम फीस वाला संस्थान हमेशा अच्छा नहीं होता और अधिक फीस वाला संस्थान हमेशा श्रेष्ठ नहीं होता। ये बातें हमें जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि गुणवत्ता और लागत के बीच संतुलन आवश्यक है। तो छात्रवृत्ति है वो भी कई संस्थान प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी देते हैं, तो इसका भी हमें देखना है। मेरिट आधारित छात्रवृत्ति है, सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य वर्गों के लिए योजनाएं हैं, या शिक्षा ऋण सुविधा है, या किसी संस्थान की वास्तविक स्थिति जानने का सबसे अच्छा तरीका वहाँ के पूर्व विद्यार्थियों से बातचीत करना, उनसे पूछे कि भी शिक्षण की गुणवत्ता कैसी है, प्लेसमेंट की स्थिति क्या है, प्रशासन का सहयोग कैसा है, छात्र जीवन कैसा है, क्या वे उस संस्थान की सिफारिश से है करेंगे या नहीं। पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव अक्सर विज्ञापनों से अधिक विश्वसनीय होते हैं और हमारा विश्वास भी जीत लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना और फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहना है, क्योंकि आजकल कई निजी संस्थान बड़े बड़े विज्ञापन देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं, और कुछ संस्थान ऐसे जैसे कोई गारंटी भी देते हैं, दावे भी करते हैं, तो हमें इन भ्रामक चीज़ों से दूर रहना है बहनों। हमें दावों के सत्यता को जांचना है, आधिकारिक वेबसाइट को देखना है, मान्यता की पुष्टि करनी है, और पूर्व जो विद्यार्थी उनसे भी बातचीत करनी है, क्योंकि बिना पुष्टि किए प्रचार प्रसार प्रचार पर विश्वास नहीं करना है। तो चर्चा और भी करेंगे, पहले सुनते हैं गीत।

0: प्यारे से गीत के बाद बात कर रही थी अपन बहनों उस शिक्षण संस्थान की। शिक्षा केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है बहनों, संस्थान का वातावरण भी हमारे जो बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहाँ की अनुशासन व्यवस्था, वहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, वहाँ का खेलकूद है, नवाचार है, सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यक्रम हैं और सकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों के जो आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। और अच्छे संस्थान विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सोच पाते हैं और हमें जो अपने बच्चे की जो रुचि है वो देखनी है। क्योंकि हम शिक्षण संस्थान तो चुन लेंगे लेकिन अभिभावक क्या करते हैं, इन पे दबाव बनाते हैं। दबाव नहीं बनाना है हमें अपने बच्चों पर, बच्चों की रुचि और क्षमता को समझें, उन पर अपनी पसंद न थोपें और सही जानकारी जुटाने की सहायता करें, आर्थिक योजना बनाएं, निर्णय प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करें। सही मार्गदर्शन बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बन सकती है और विद्यार्थियों को भी संस्थान चयन प्रक्रिया में जो उन्हें देखना चाहिए कि अपनी रुचि है वो पहचानें, विभिन्न संस्थानों की तुलना करें, पाठ्यक्रम का अध्ययन करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें, क्योंकि सही जानकारी विवेकपूर्ण निर्णय सफलता की कुंजी है। उस शिक्षा किसी भी विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है बहनों। सही संस्थान का चयन केवल डिग्री प्राप्त करने का निर्णय नहीं बल्कि भविष्य निर्णय का निर्णय है। आज जब शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विकल्प हैं उपलब्ध हैं, तब अभिभावक और विद्यार्थियों को सतर्क रहकर संस्थान की मान्यता, शिक्षण गुणवत्ता, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक पहलुओं में हमें पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। क्योंकि विज्ञापनों और आकर्षक दावों के प्रभाव में आने के बजाय तथ्यात्मक जानकारी है वो आधार पर निर्णय लेना चाहिए। और सही संस्थान का केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, सही संस्थान न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है बल्कि बहनों विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और सफल नागरिक बनने की दिशा भी देता है। इसीलिए उस शिक्षा के लिए संस्थान का चयन करते समय सावधानी, विवेक और हमें जो जानकारी है वो जुटाकर सफलता का सबसे मजबूत आधार है वो चुनना चाहिए।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्था

0: संकल्पन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
3: बिल्कुल बहनों, विराम के बाद फिर बात करते हैं हमारे बढ़ते बच्चों के साथ बने उसके मित्र और संभालें उसके कदमों को। तो बच्चे किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं और उनका वर्तमान ही देश का भविष्य होता है। बहनों, प्रत्येक माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा स्वस्थ, संस्कारी और आत्मविश्वासी बने, सफल बने। लेकिन ये सपना तभी साकार हो सकता है जब उसको बच्चे को पालन पोषण में केवल सुविधाएं नहीं बल्कि उचित मार्गदर्शन है, स्नेह है, विश्वास है और जो हमारा मित्रवत व्यवहार है वो हो। बचपन से किशोरावस्था अवस्था तक सफर बच्चों के जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण काल होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जिज्ञासाएं, इच्छाएं, सोच है, व्यवहार भी बदलने लगते हैं। ऐसे समय में माता पिता यदि केवल अनुशासनकर्ता की भूमिका निभाते हैं तो बच्चों को उनके बीच की दूरी वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि हम बच्चों के मित्र बनकर उनका मार्गदर्शन करें तो बच्चे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक अच्छे से और आत्मविश्वास के साथ और समझदारी से करते हैं। आज के आधुनिक युग में जब बच्चों के सामने अनेक अवसरों के साथ साथ उन्हें एक चुनौतियाँ भी मौजूद है, जब माता पिता की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, इसीलिए यह आवश्यक है कि अभिभावक बच्चों के साथ मित्र बनकर या दोस्त बनकर रहें और उनके प्रत्येक कदम को सही दिशा देने का प्रयास करें। और बच्चों के विकास में जो कई चरण आते हैं, प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषताएं होती है, इन चीज़ों को अपने ध्यान रखना है कि इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से, जैसे शैशवावस्था है, माता पिता पर निर्भर होता है, उसे सुरक्षा है, प्यार है, देखभाल है की आवश्यकता होती है। वहीं बाल्यावस्था आती है तो इस अवस्था में अवधि में बच्चा बोलना, चलना, सीखना, सामाजिक व्यवहार है अपनाना शुरू कर देता है, उसकी जिज्ञासाएं बढ़ जाती है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। और वहीं किशोरावस्था आती है तो ये जीवन का सबसे संवेदनशील दौर होता है। इस समय बच्चों के में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तेजी से होते हैं, वे अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं और स्वयं निर्णय लेने की कोशिश भी करते हैं। सही अवस्था में माता पिता को मित्र बनना सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है और माता पिता और बच्चों का रिश्ता जो है वो प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे केवल आदेश सुनना पसंद नहीं करते, वे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उन्हें समझा जाए। जब माता पिता बच्चों के मित्र बनते हैं तो उन्हें उनके सामने खुलकर अपनी जो समस्याएं हैं वो बताएं, गलत संगति से बचने की संभावना है वो बढ़ जाती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, तनाव और चिंताएं हैं वो कम होती है, परिवार के प्रति जुड़ाव बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता है वो विकसित होती है। और जो बच्चों के मित्रवत संबंध बच्चों को ये विश्वास दिलाता है कि उनके माता पिता हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। किसी भी रिश्ते की मजबूती का आधार संवाद होता है, क्योंकि बातचीत करने से जो मन के अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता चलता है। और आज के व्यस्त जीवन में कई परिवारों में संवाद की कमी दिखाई देती है, माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे मोबाइल, टीवी या इंटरनेट में। ऐसी स्थिति में बच्चों को और अभिभावकों के बीच भावनात्मक दूरी वो बढ़ जाती है। तो हमें प्रतिदिन कुछ समय बच्चों के साथ बिताएं, उनकी दिन भर की जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में पूछें, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने और बिना डांटे टोके उनकी बात को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, तब वे अपने मन की बातें वो खुलकर साझा करेंगे। बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र में बच्चों के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है और वे कभी अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं तो कभी उदास भी। तो हमें कभी आत्मविश्वास से उनको मोटिवेट करना है तो कभी निराशा का

वो नहीं होने देना है। अक्सर माता पिता बच्चों की भावनाओं को छोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनकी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है। और माता पिता को चाहिए कि बच्चों की भावनाओं का सम्मान करें, उनकी परेशानियों को गंभीरता से लें, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दें, भावनात्मक सहयोग प्रदान करें। भावनात्मक सुरक्षा बच्चों के स्वास्थ्य, स्वस्थ मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। और विश्वास का वातावरण बनाएं। यदि बच्चे को ये डर है कि उसकी हर बात पर डांट पड़ेगी, तो वह अपने मन की बातें छिपाने लगेगा। यही दूरी आगे चलकर गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। तो जो विश्वास का वातावरण बनाएंगे, इससे क्या है, हमें बच्चों का अनावश्यक संदेह नहीं रहेगा। उनकी बातों को ध्यान से सुनने, उनकी गलतियों को संयमित प्रतिक्रिया दें, झूठ बोलने के बजाय सच बोलने के लिए प्रेरित करें। जब बच्चे को विश्वास मिलता है, तो वे अपने माता-पिता को सबसे अच्छा मित्र मानने लगते हैं। और मित्र मानने से क्या है कि वो अपनी मन की बातें वो खुलकर साझा करें, और बच्चे की रुचियां हैं वो समझें, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग रुचि होती है। क्योंकि किसी बच्चे की पढ़ाई में होती है, किसी की खेल में होती है, किसी की संगीत या कला में होती है। तो हमें माता पिता को अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या, बच्चे तनाव और असंतोष का अनुभव करते हैं। माता पिता को चाहिए कि बच्चों की जो रुचियाँ हैं उनका सम्मान करें, उनकी प्रतिभाओं को पहचानें और उनकी क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करें, और उन्हें अपनी पसंद के क्षेत्र चुनने में स्वतंत्रता दें। जब बच्चे अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास और सफलता दोनों बढ़ते हैं। और हमें आज का युग है वो डिजिटल है, तो इनमें भी माता पिता से को चाहिए कि बच्चों के साथ डिजिटल विषयों पर खुलकर चर्चा करें, और उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित करें, गलत संगति से बचाएं ताकि बच्चे सचेत रहें। और आप किसी दूसरे बच्चे की अपने बच्चे के साथ तुलना मत करें, क्योंकि इससे बच्चे ईर्ष्यालु स्वभाव के, और तो बच्चा का मन है वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो मन उसका टूट जाता है फिर, कि हर माता पिता या हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कोई बच्चा किसी चीज़ में निपुण होता है, कोई पढ़ाई में, कोई संगीत में, कोई कला में, तो हर बच्चे की जिज्ञासाएं भी अलग अलग होती है। तो हमें ऐसे तुलना करने से बचना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बच्चों से तुलना ना करें। परिवार में सकारात्मक वातावरण है वो बनाए, ताकि बच्चे में भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, और उनके साथ हर बात उनकी सुने। बदलते समय के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि आज की पीढ़ी सोच और जीवन शैली पहले की पीढ़ियों से अलग है। इसीलिए माता पिता को भी समय के साथ स्वयं को बदलना चाहिए, उनकी बातें सुने, उनकी रुचियों को जाने, और बच्चों के अभिभावकों के बीच जो बेहतर सामंजस्य है वो स्थापित करें। इससे क्या है कि बच्चों में ईमानदारी है, सहानुभूति है, जिम्मेदारी है, मेहनत है, सम्मान है, बड़ों का सम्मान करने का जो आ है आदर है, वो उन्हें अपने आप ही आ जाएगा। जीवन भर सही दिशा प्रदान करें, और बढ़ते बच्चों का मार्गदर्शन करना प्रत्येक माता पिता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बच्चों को केवल भौतिक सुविधाएं प्रदान कर देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रेम, विश्वास, सहयोग और सही दिशा को भी आवश्यक होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता को भी अपनी भूमिका में परिवर्तन लाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अब बच्चों को मित्र, मार्गदर्शक या प्रेरक बनना पड़ता तो है ही है। लेकिन जब माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनकी रुचियों का सम्मान करते हैं, और प्रेम पूर्वक उनके जो मार्गदर्शन करते हैं, तब बच्चे आत्मविश्वासी, जिम्मेदारी और सफल व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते हैं। इसीलिए प्रत्येक अभिभावक को ये प्रयास करना है कि बढ़ते बच्चों के साथ मित्र बनकर चले, उसके कदमों को सही दिशा दें और जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाएं। यही स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और उज्जवल राष्ट्र निर्माण के सबसे मजबूत आधारशिला है।

बिल्कुल, प्यारे से गाने के बाद बात करते हैं। नन्हे के बचपन से करें उसमें स्वस्थ आदत डालने की शुरुआत है। कहते हैं बहनों, बच्चे किसी भी परिवार की सबसे अमूल्य धरोहर होती है, धन होता है, क्योंकि उनका स्वस्थ, खुशहाल और संस्कारित जीवन प्रत्येक माता पिता का सपना होता है। बच्चे का बचपन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर जो भी संस्कार, आदतें और व्यवहार अंकित किए जाते हैं, वे जीवन भर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बहनों कि किसी भी अच्छे समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव बचपन में ही रखी जाती है। आज के आधुनिक और तेजी से बदलते जीवन में बच्चों के सामने अनेक अवसरों के साथ साथ अनेक चुनौतियां भी है। तो बदलती जीवन शैली, बढ़ता स्क्रीन टाइम, जंक फूड की बढ़ती लोकप्रियता और शारीरिक गतिविधियों की कमी और अनियमित दिनचर्या बच्चों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। तो हमें उनमें स्वस्थ आदतें हैं वो डालें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी शामिल करें। यदि बचपन में सही आदतों की नींव रख दी जाए तो बच्चा जीवन भर स्वस्थ, अनुशासित, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। तो हमें सीखने की क्षमता है वो, अगर हम बच्चे को बचपन से ही सिखाएं, आसपास का जो वातावरण है वो दिखाएं, वो बताएं और ऐसा ही रखें पॉजिटिव, तो सीखने की क्षमता वो अधिक होती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति है वो प्रबल होती है, नई आदतें आसानी से विकसित होती है और व्यवहार और संस्कारों की नींव भी रखी जाती है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों में संस्कार, सकारात्मक और स्वस्थ आदत है वो विकसित करें, और स्वस्थ आदतें बच्चों के संपूर्ण विकास में भी सहायक होती है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ती है, शारीरिक विकास है वो बेहतर होता है और मानसिक स्वास्थ्य वो मजबूत होता है, आत्मविश्वास भी विकसित होता है और अनुशासन और जिम्मेदारी की जो भावनाएं हैं वो आती है। जीवन भर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा वो मिलती है। स्वस्थ आदतें केवल वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रखती है, और उसके साथ साथ हमें संतुलित भोजन है उसकी आदत भी डालनी चाहिए हमारे बचपन में। बचपन से ही बच्चों के पौष्टिक भोजन खाने की आदत है वो डालनी है, क्योंकि उन्हें दूध और दूध के उत्पाद उनमें शामिल करना है। उनके खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं, उनको मौसमी फल है, दालें हैं, अंकुरित अनाज है, साबुत अनाज है, मेवे हैं। बच्चों को जंक फूड, अधिक मिठाई, कोल्ड ड्रिंक या अत्यधिक तले हुए खाद्य पदार्थों से बचाना चाहिए, और समय पर भोजन करने की आदत है वो जरूर डालें बहनों। केवल पौष्टिक भोजन ही नहीं बल्कि समय पर भोजन करना भी महत्वपूर्ण है। नाश्ता कभी न छोड़ें, उनको सिखाएं, निश्चित समय पर भोजन करें, भोजन की अच्छी तरह से चबा कर खाएं, खाते समय मोबाइल या टीवी का उपयोग ना करें।

क्योंकि ये आदत पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाती है और बच्चों को अनुशासन का विकास है वो करती है। और स्वच्छता की आदत है वो भी डाली, हाथ धोने की है, प्रतिदिन नहाने की है, नाखून साफ करने की है, दांतों की सफाई है, साफ कपड़े पहनने की है, और नियमित व्यायाम और खेलकूद की आदत है वो भी जरूर डालें, क्योंकि दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, योग करना, खेलकूद में भाग लेना, ये भी जैसी गतिविधियां हैं उनको भी हमें हमारे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, क्यों इससे क्या है कि मानसिक तनाव भी कम होता है। और पर्याप्त नींद लेने की आदत है वो भी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद भी बहुत जरूरी है, समय पर सोना, समय पर जागना, सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करना। और पानी पीने की आदत है वो जरूर डालें, क्योंकि पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन की क्रिया को बेहतर बनाता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पीना विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है। और पढ़ने की आदत है वो विकसित करें, ज्ञान को बढ़ाता है, भाषा कौशल को विकसित करता है। अनुशासन की आदत है वो है, उनको समय के महत्व के बारे में बताएं, कार्य समय पर पूरा करना, नियमों का पालन करना, जिम्मेदारियों का निभाना। और सकारात्मक सोच है वो विकसित करें, भावनात्मक स्वास्थ्य का है वो ध्यान रखें, और सामाजिक व्यवहार है उनको भी बताएं। छोटी छोटी बातें हैं वो, हमें हमारे बच्चों, नन्हे बच्चों को शुरू से ही अगर हम आदर डालेंगे तो सीख जाएंगे। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है और उनका स्वस्थ विकास हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वस्थ आदतों की शुरुआत बचपन से करना सबसे प्रभावी और स्थायी उपाय है। संतुलित भोजन, स्वच्छता, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, अनुशासन और सकारात्मक सोच और संस्कार, अच्छे संस्कार बच्चों को स्वस्थ और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। तो माता पिता और परिवार और हम सब मिलकर बच्चों की अच्छी आदतों और शारीरिक विकास के लिए ये संकल्प लेना है कि उन्हें मुन्ने बच्चों का बचपन से ही उन्हें स्वस्थ आदतों के बीज बोएं, ताकि वे कल और स्वस्थ, जागरूक, जिम्मेदार और सफल नागरिक बनकर देश और समाज का गौरव बढ़ा सके। बहनों, कार्यक्रम का समय है वो पूरा हो चुका है। कार्यक्रम से दे अनुमति माया को नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा

0: पवेलियन है जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

0: और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया।

उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा

0: और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आशा फिल्म का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: देखो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अंतराल के बाद फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कुमार सानू की आवाज में। दिलवाले फिल्म के इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत रचना नदीम श्रवण की।

0: कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। दिलवाले फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को, शब्द रचना समीर की।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अंतराल के बाद कार्यक्रम तराने नए पुराने में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत। यह है सोनू निगम और श्रेया घोषाल, फिल्म का नाम क्रिस, शब्द रचना नासिर फराज की और संगीत रचना राजेश रोशन की।

कोई तुमसा नहीं, सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ में कृष फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से।

हमको तो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें। मोहम्मद रफ़ी के गाए नैना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं सम्पन्न होती है। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी।

0: जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं, और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने ये कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआ, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआ का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
1: देखो जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
0: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
1: हाँ यस, मैं मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं काफी शरारी था। मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं।

0: पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि आदमी का तो काम ही यही आर्म फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन। तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है, और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो। लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना। वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया। देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ
1: वाह क्या
0: और
1: बात।
0: मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी। तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे। 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया, और आगे मेरा मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं, उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनकर पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूं, शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहां ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे? हर
0: आपने आप दुखती रग पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: बच्चे
0: आज
1: के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को। अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ,
1: अपने
0: बट देख के ऐसा लग रहा था कि बस मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ।
1: पास ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर,
1: जी
0: बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा
1: आपके साथ रहता है,
0: हमेशा
1: कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना, आपको उठने में भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप

0: मेरी मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है। उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी, उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी, कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं।
1: हाँ हाँ।
0: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी,
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात, और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तन्वर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तन्वर ओवर who has such kind of ये कहूंगी मैं सोच है, जिसके पास जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने, कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना, तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर मुझे, पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया, जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो

0: अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट, यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर. और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी.
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए. फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं. वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं. आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग. और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है. और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी. हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा.
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत. वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी. लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए. कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में. मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं. और ये शायद फोर्थ टर्म था. और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है. वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं. उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन. और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी. मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती. खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी. फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे. हमने कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती. और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया. क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई. तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना.
0: वाह क्या बात, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए. बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स.

0: संदेश सोल्जर्स के आज के संक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में

0: क्या होता है, क्या सोचता है वो?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है, उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं। और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसमें उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो, क्या क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं, चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
1: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
0: जी, निश्चित रूप से आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कुछ जो जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है,
0: जी
1: आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और

0: मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण वॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण है कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशन्स के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल, अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स

0: जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: विदाउट एनी कंप्लेंट्स। वो इसमें इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था, आर्मी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे, आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है। ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना। और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
0: वाह
1: आ
0: क्या
1: जाता
0: बात है।
1: है,
0: यानी कि वो पल जिस
1: वो
0: वक्त
1: पल
0: आप प्रणय
1: जिसमें
0: सूत्र
1: उन्होंने
0: में
1: डांस
0: बंधे
1: किया है,
0: और उनका नृत्य कहीं ना
1: उनका
0: कहीं
1: बहुत
0: आपको
1: असर।
0: लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं

0: आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूं, मैं कभी मना नहीं करूंगी। आप बताइए, डू यू वांट टू रीलिव दोस 26 इयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स। अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप
1: आज के युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा जी। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए, और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देशप्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम

0: हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित किया गया। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं हमारे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

जी दोस्तों, बारिश के इस मौसम में इस प्यारे से गाने के साथ कार्यक्रम युववाणी की शुरुआत हो चुकी है। आज का युववाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका।

जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन जो है युवाणी में खास और स्पेशल सेगमेंट हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। वह लेकर आते हैं बातें रेडियो की। जी हाँ दोस्तों, इस स्पेशल सेगमेंट में जो है आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर जो है आपके चुनिंदा कमेंट्स जो है वो कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आज भी काफ़ी सारे जो है कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि हमारे नियमित श्रोता साथी भी हैं और भी जितने भी नया श्रोता साथी हमसे जुड़े हैं उनके भी कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं। जी दोस्तों, आज जो है हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है बातें रेडियो की, उसके अंदर हमको पहला कमेंट जो है वो मिला है रामकुमार रेवाड़ का। ये हमें लिखते हैं सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से, और इन्होंने जो है रेडियो के प्रति अपने जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा किए हैं। और ये लिखते हैं कि रेडियो सुनने का जो जुनून है वो उन्हें बचपन से ही था। 1978 में बड़े भाई साहब ने मुझे ट्रांजिस्टर ला के दिया, लेकिन ट्रांजिस्टर में हमारे पड़ोसी देश की जो आवाज़ है वो ज़्यादा साफ सुनाई देती थी और हमारी आकाशवाणी की आवाज़ बहुत कम सुनने को मिलती थी। पड़ोसी देश की रेडियो प्रोग्राम जो है उन प्रोग्रामों में हमारे बारे में दुष्प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और इसलिए सरकार ने आकाशवाणी का विस्तार करते हुए हमारे गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 22 फरवरी 1981 को आकाशवाणी की स्थापना की गई। उसके बाद आकाशवाणी के प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर और साफ सुनाई देने लग गए और हमारे पड़ोसी देश के दुष्प्रभाव से भी हमको निजात मिल गई। धीरे धीरे जो है वक्त ने करवट ली और आकाशवाणी के प्रोग्राम का विस्तार होने लगा, और जैसे समय बदला ऐसे ही जो है आकाशवाणी जो है जन जन की आवाज़ बन गया। और आज जो है आकाशवाणी के को जो है 90 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, और इस डिजिटल युग में आज आकाशवाणी प्रत्येक श्रोता के जेब में विराजमान है, यानी कि मोबाइल ऐप के द्वारा प्रोग्राम हमको सुनने को मिलते हैं, और जो भी आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं वो किसी भी कार्य में जो है वो कार्य करते हुए भी जो है वो प्रोग्राम सुन सकते हैं, और आकाशवाणी के जो प्रोग्राम है वो हम निरंतर और रेगुलर सुनते आ रहे हैं। और आकाशवाणी का जो मेन मोटो है वो यही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी से बढ़िया जो है वो कोई भी साथी हमको आज तक नहीं मिला। सुबह से लेकर रात्रि तक हम आकाशवाणी के साथ जुड़े रहते हैं और प्रोग्राम का आनंद लेते रहते हैं, और इनमें जो है आकाशवाणी चूरू जो है वो भी हमारा बहुत खास मित्र बन गया है। आकाशवाणी चूरू से प्रसारित प्रत्येक प्रोग्राम बहुत ही शिद्दत के साथ हम सुनते हैं, और प्रोग्राम की क्वालिटी बहुत ही उच्च क्वालिटी की और बहुत अच्छी आती है। आकाशवाणी चूरू को ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम देने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपके जो ये चुनिंदा विचार हैं, बहुत ही अच्छे अनुभव जो है रामकुमार रेवाड़ ने हमारे साथ साझा किए हैं, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने जो है अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, और आपने जो है ये जो हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है बातें रेडियो की, इसके अंदर कमेंट किया।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको

0: जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी दोस्तों, स्पेशल सेगमेंट बातें रेडियो की में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने आपके सभी के साथ एक पोस्ट शेयर की थी और उस पोस्ट में जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी आप मेंशन किया गया था, जो कि है कि रेडियो का सफर अतीत से डिजिटल युग तक। और इसी टॉपिक के ऊपर जो है हमको कमेंट प्राप्त हुआ है विनोद कुमार का। ये हमें लिखते हैं 10 DPN गोगामेड़ी तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि अतीत के उस सुनहरे दौर में जब पूरा परिवार एक रेडियो के पास बैठकर खबरें और फरमाइशी गानों को सुनता था, वह समय आज भी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। आज भले ही हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और रेडियो जो है मोबाइल व इंटरनेट के जरिए नए रूप में हमारे सामने है, लेकिन आकाशवाणी की आवाज का जादू जो है वो आज भी वैसा ही है। तकनीक है वो बदल सकती है, पर रेडियो से जुड़ा हमारा दिल और इसकी यादें जो है वो हम कभी भी नहीं बदल सकते। बेहतरीन विषय के लिए जो है आकाशवाणी चूरू का बहुत बहुत आभार। विनोद कुमार, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने जो है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अपने अनुभव है वो हमारे साथ यहाँ पर साझा किए। और अगला जो कमेंट है वो हमें प्राप्त हुआ है रितिका मिस्किन वानी आरव चंद्रकला गणेश काशीनाथ संगीता मिस्किन आरोही प्रियांशी सोनी का। यह हमें लिखते हैं दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से। और इन्होंने लिखा है कि रेडियो जो है वो संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसने दशकों से लोगों को सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान किया है। पहले के समय में लोग ट्रांजिस्टर रेडियो पर समाचार गीत नाटक और विशेष कार्यक्रम सुना करते थे और रेडियो ने जो है गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। समय के साथ तकनीक बदली और रेडियो ने भी जो है खुद को आधुनिक बनाया, लेकिन आज जो है पारंपरिक FM और FM रेडियो के साथ साथ इंटरनेट रेडियो वेब स्ट्रीमिंग मोबाइल एप्स और पॉडकास्ट का दौर है। अब जो श्रोता हैं वो दुनिया के किसी भी कोने से अपने पसंदीदा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं और डिजिटल युग में भी जो है रेडियो अपनी विश्वसनीयता सरलता और जन सरोकारों के कारण लोगों के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। यह अतीत की यादों को संजोते हुए भविष्य की नई तकनीकों के साथ जो है हमें लेकर आगे बढ़ रहा है और हमको जो है आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम जो है आकाशवाणी चूरू से प्रसारित होते हैं। जी, आप सभी का जो है यहाँ पे जो कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: जी दोस्तों, हमारे जो स्पेशल सेगमेंट है बातें रेडियो की, उसमें आज का विषय है रेडियो का सफर अतीत से डिजिटल युग तक। और इसमें अगला कमेंट जो है वो हमें मिला है वारिस अली खान का। ये हमें लिखते हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, और इन्होंने अपने कमेंट में लिखा है कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। आगे ये लिखते हैं कि रेडियो ही मेरा हमसफर है। आपको बताएं कि मैं पहले संकोची स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक से किसी से भी बात नहीं कर पाता था और मेरे बोलने की शैली जो है वो बहुत ही खराब थी। लेकिन जब से मैंने, यानी कि 1980 से रेडियो सुनना शुरू किया है, तब से मेरी शैली में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है और आप लोगों का ये सुनकर मेरी जानकारी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। मैं बहुत ही एक अच्छा वक्ता बना और अब मैं जो है किसी भी बात को जो है वो लॉजिकली रख पाता हूँ। रेडियो है वो मनोरंजन और ज्ञान का बेहतरीन जरिया है और मैं इसे जो है हरदम सुनना पसंद करूंगा। जी दोस्तों, और अगला जो कमेंट है वो हमें मिला है प्रवीण चौहान का। ये लिखते हैं कि अतीत में रेडियो जो है वो परिवार के एक सदस्य के जैसा था, आज भी हम रेडियो को बहुत प्यार देते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके दौर में, अब तो जो रेडियो है वो मोबाइल में ही सुनने को मिल जाता है। समाचार हो या मनोरंजन कार्यक्रम जो है वो हम दिन भर रेडियो सुनते रहते

सकते हैं और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम जो है आकाशवाणी चूरू से प्रसारित होते रहते हैं। जी दोस्तों, आप सभी श्रोता साथियों का प्यार ही है जिससे कि जो आकाशवाणी चूरू परिवार है वो इतने बेहतरीन प्रोग्राम है वो यहाँ से दे पाता है। तो आप भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए ओनली ऑन 100.7 FM पर।

जी दोस्तों, स्पेशल सेगमेंट बातें रेडियो की में जो है अगला कमेंट हमें मिला है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता साथी हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी चूरू परिवार को आकाशवाणी के 90 वर्ष की सफल और सुरीली यात्रा पूर्ण करने के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देश भर के श्रोता जो है वो आज भी डिजिटल दौर में भी आकाशवाणी को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जैसे मेहनती, ज्ञानी और होनहार उद्घोषक आत्मीय एवं समर्पित भाव से हम सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। आपके और श्रोताओं के बीच जो अपनेपन का रिश्ता है, इसी ने रेडियो को आज तक जीवित रखा है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सिलसिला है ये यूं ही सदियों तक बरकरार रहे और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम है आकाशवाणी चूरू से सुनते रहें। जी बिल्कुल, संतोष खड़गे जी और विनोद खड़से जी, आपका भी जो है बहुत बहुत आभार कि आपने जो है कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आपने जो है हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पोस्ट है उसके ऊपर कमेंट करके अपने मन के जो भाव है वो हमारे साथ साझा किए। जी दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें कि जितने भी श्रोता साथी हमसे नए जुड़े हैं उनको ये बता दें कि जो गुरुवार के दिन जो है हमारा स्पेशल सेगमेंट रहता है बातें रेडियो की, इसके अंदर जो है हम आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट आपके सभी के साथ साझा की जाती है, जिसके अंदर जो है उस पोस्ट से में ही जो है एक विषय है वो छिपा रहता है, उसमें विषय लिखा रहता है, उसी विषय के ऊपर जो है आप हमसे जो है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपने जो मन के भाव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनको कि हम अगले आने वाले गुरुवार के दिन

जो है हमारा जो स्पेशल सेगमेंट होगा बातें रेडियो की, उसके अंदर शामिल कर पाएंगे और कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो हैं उन्हीं को हम ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता साथी हमको कमेंट करेंगे और कार्यक्रम में जरूर जो है भागीदारी लेंगे। फिलहाल जो है वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।

अभी,

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बात।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना थान किया बैठे हो।
2: काहे करूं बाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध चीसरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनने से मिल से पशुपालन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया धीनेरी बातें कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाई रा
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: राम राम भाई बंशी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम।
4: देखो सिंजा पड़ी री बेला है और लठ हाथ में लेवड़ो और गमछो कांधे पर टांगेड़ो लगे कठी घूम रहे हो।
5: थे तो हरखू भाई सारी बात जानो हो।
4: जानो के माथे पसीनो टपक रही है, पूछ रहा हो बार बार है कई बात है।
5: देखो साहब री बेड़ा और संजेरी बेड़ा
4: हाँ
5: बी टेमरा आदमी ने थोड़ा टहलना चाहिए ताकि उन्हें सु कही है कि शरीर है जो निरोग रहे।
4: बिल्कुल सा देखो जे सुबह री बेड़ा है तो भी आपने घूमना चाहिए और साथ है साथ जिका भी आपा हड़का फुलका व्यायाम है योग है वो भी आपा कर लेवा तो शरीर रहने आप निरोगो रहे।
5: इन वास्तरी क्या करे कि भाई जिको करे योग
4: हाँ
5: उन शरीर रहे निरोग
4: निरोग। बिल्कुल सा देखो सुबह उठते ही साथ कहीं है आप देखो तैयार हो जावा और अनुलोम विलोम बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है अगर बिने भी आप कर लेवानी तो भी आप निरोग रहो सा। और आप अगर घर से बाहर निकल 2-3 किलोमीटर घूम लियो तो और ही सोने में सुहागे की बात है सा।
5: भाई जितो करो नहीं आप शरीर ने दूरो
4: हाँ
5: भाई काम शु करा एक तो
4: हाँ।
5: और एक अपना अगर योग रे माध्यम से वो जो दूरो को नहीं रहना होवे वो उल्टेरो जो कही है कि शरीर ने सोरो रखने रो योग
4: हाँ। तो देखो आपने जीवन रे माने एक आदत डालनी है कि आपने सुबह और सिंजारी बेला घूमने रो जो बखत है वो निकालना है और हल्का फुल्का जिका व्यायाम है वे करना है। जे आप कोई रोग विशेष से जुड़ेड़ा हो तो आप जिका भी विशेषज्ञ है बी सलाह ले पर आपने योग करना है।
5: कुल मिलार बात आई है कि शरीर जो है नी उन्होंने कोई न कोई काम रमाने लगाएड़ो रखो।
4: हाँ देखो शरीर सु पसीनो निकलना चाहिए पसीने में मेहनत छुपेड़ी है
5: और मेहनत सुई देखो सा मिले धन।
4: हाँ, बिल्कुल सा तो मैंने बताओ योग रे साथ है कि आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा।
5: लोग कागज तो घनकरा लिखे है कोई लिखे है कि भाई और रानी खेत रोग कहीं हुए उन बाबत जानकारी दो और एक फाउल पॉक्स चेचक रोग
4: देखो बर्ड फ्लू रे आयो है।
5: अच्छा
4: राम जी लिखी है मुर्गिया में होने वाला रोग
5: मुर्गिया रा प्रमुख रोग अरे रोक थाम रा उपाय।
4: वाह वाह ठीक रस्तो बताओ आज विशेषज्ञ जी का पता नहीं हाँ। नाम आप लोग बता दूं यहाँ पर चौपाल में पधारे है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे है सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने में करा।
5: राम राम सा
6: राम राम हरकू भाई राम राम बंसी भाई।
5: देखो सा आपा कर सा डॉक्टर साहब सु प्रसन्न और डॉक्टर साहब जब जवाब देसी नी तन आपना जका पशुपालक भाई नी बे होसी प्रसन्न।
4: बिल्कुल
5: हमार पूछू सा तो से पहली डॉक्टर साहब मारा पशुपालक ने आप आ बताओ कि मुर्गिया माए होने वाला प्रमुख रोग है वे किसे किसे होया करे।
6: हाँ बंसी भाई प्रमुख रोग अपने मुर्गिया में मेनली 3 कारक होया करे चाहे मुर्गिया हो पशु हो पक्षी हो क्या तो वायरस हुए क्या बैक्टीरिया हुए क्या प्रोटोजोआ पेरासाइट हुए
5: जी।
6: तो वायरस होने वाली मेन पहले मैं बताऊं आपने बीमारियां सब बड़ी बीमारी बर्ड फ्लू
5: जो अच्छा।
6: पूरा वर्ल्ड पूरा राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रसित है बर्ड फ्लू ला रहे 2-4 बार हुए तो लाखों लाखों की संख्या में अपन मुर्गियां मारनी पड़ी ताकि मनुष्य में वो रोग नहीं पहुंचे
5: जी।
6: दूसरो रानी खेत डिजीज है वो भी बहुत खतरनाक छूतरी बीमारी। तीसरो फाउल पॉक्स है चौथो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है।

0: आपने बार लारे कोरोना बीमारी हुई सेम बिसर बारी बा बीमारी है बिन इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहवे बा मुर्गिया में हो जावे। चौथी मर्क्स डिजीज आपने कैंसर हुआ मनुष्य आदमिया में बस सेम ट्यूमर हो जावे मर्क्स डिजीज में। पांचवी गंबोरो डिजीज है, लीची रोग है, ये सब वायरस होने वाला है। दूसरा बैक्टीरिया होने वाला रोग है, इन्फेक्शियस कोराइजा है, फाउल कोलेरा है, हेजो हुए आपने जी हाँ फाउल कोलेरा हुआ है, पुलोरम डिजीज है, ई कोलाई है, फाउल टाइफाइड है, आपने टाइफाइड हुआ जी यहाँ भी टाइफाइड हुआ है, ये सब जीवाणुओं बैक्टीरिया होने वाला बीमारियां हैं
1: जी।
0: तीसरी परजीवों पेरासाइट जो चीचड़ है, टिक है, माइट है, कोक्सीडियोसिस है, एस्परजिलोसिस है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये सब प्रोटोजोआ या पेरासाइट होने वाली ये प्रमुख बीमारियां मुर्गिया में हुए।
2: वाह साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आप, घनकरा रोग बताए पर आज आप कुछ मुख्य मुख्य रोग पर चर्चा कर सा। तो सब पहला डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि रानीखेत रोग रा कारण लक्षण रोकथाम रा उपाय कहीं वे इन विषय पर थोड़ी जानकारी दो सा।
0: रानीखेत डिजीज अगर रानीखेत नाम ही वास्ते पड़े होगी, रानीखेत एक जगह है उत्तराखंड में। तो सब पहले बठे भारत में डिजीज आई आ बीमारी आई
1: अच्छा।
0: जी इरो नाम रानीखेत भी जगह रे हिसाब रानीखेत डिजीज नाम पड़ियो। दूसरो नाम ये बीमारी रो न्यूकैसल डिजीज भी कहवा, न्यूकैसल एक जगह है इंग्लैंड में।
1: अच्छा।
0: तो भारत में रानीखेत में आई लेकिन सब पहले महामारी रे रूप बठे न्यूकैसल में आई, इन्हें इरो दूसरो नाम न्यूकैसल डिजीज भी मेरे हिसाब आप राखोड़ो है। तो इमें का है कि सब उम्र री मुर्गिया में हो सके, छोटा चूजा लेर बूढ़ी भी मुर्गी तक आ बीमारी हो सके, टर्की में भी वितर समान रूप हुए। इरो कारक एक मिक्सो वायरस हुआ करे भी वायरस री वजह आ हुए। इमें इरा मेन लक्षण आ चार तरह री हुए, पहलो विरुलेंट फार्म है, दूसरो मिसोजेनिक फार्म है, तीसरो लेंटोजेनिक फार्म है और चौथो एसिम्टोमेटिक। तो पहलो विरुलेंट फार्म इन एशियन टाइप रानीखेत डिजीज भी कहवे, आ बहुत खतरनाक है, इमें 100% 100% मृत्यु निश्चित है, इमें मरे ही मरे मुर्गी और आ 3-4 दिन तक रहवे और बीर बाद में कदे कदे एक ही दिन में सगली मुर्गियां मर जावे। इमें लक्षण तेज बुखार हुए और मुर्गियां ने सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुए, मुंह खोल मुर्गियां भी में सांस लेने की कोशिश करे और अंडा उत्पादन सब भी में कम हो जावे। दूसरी है मिसोजेनिक फार्म, बिन अमेरिकन टाइप किया करे, बी में मृत्यु थोड़ी कम हुए, कम खतरनाक है, 5-20% तक ही मृत्यु हुए, सांस लेने में कठिनाई हुए, हरिया रंगरा बी में दस्त हुए तो और अंडा उत्पादन में कमी तो बात ठीक हो सके, 10-20% तक भी मृत्यु हुए, 80% मुर्गियां बी में ठीक हो जावे। तीसरी है लेंटोजेनिक, इमें मृत्यु दर बहुत कम है, वो श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ हुए लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए लेकिन वह ठीक हो जावे। चौथी एसिम्टोमेटिक भी लक्षण दिखे कौन नहीं।
1: अच्छा।
0: पर बड़ी मजेदार बात है कि इमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे।
1: अच्छा।
0: तो भी अपन ठा पड़े के ओ रानी खेतरो लेंटोजेनिक है
1: रोग है,
0: एसिम्टोमेटिक सिम्टम कौन आ रहा है, इमें भी में खांसी आवे उल्टी आवे पर मुर्गी उल्टी चालन लाग जावे तो आपने ठा पड़ जावे आ बीमारी, कदे कदे बट टांगे रे बीच में माथो देर भी बैठ जावे, तो यूं आपने ठा पड़े कि यह एसिम्टोमेटिक रानीखेत डिजीज है। तो ई रोग रो कोई उपचार नहीं है, जो मेन जो विरुलेंट फार्म में बतायो एशियन टाइप बीरो कोई उपचार नहीं है, बाकी तीनों फार्म रो थोड़ो उपचार है ठीक हो जावे। वैक्सीनेशन इमें जरूर कराना चाहिए, ब्रॉयलर और लेयर में तो 7वें दिन पर जन्मे जीव, 7वें दिन पर, 28वें दिन पर और 10 सप्ताह पर।
1: अच्छा।
0: 3 बार वैक्सीनेशन कराना जरूरी है और ब्रॉयलर में सिर्फ 7 दिन पर वैक्सीन करा दो, वो भी काम चल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करा कि भाई आपने जी की जानकारी आप दी उनासु आपने जगह पशुपालक भाई है वे लाभ उठा सी। अब बात करा डॉक्टर साहब एक रोग आप बतायो बर्ड फ्लू, जिके सु देखो साहब भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो भी कहीं है कि इनसु प्रभावित हुई परेशान हुई, आप बताओ कि इन बर्ड फ्लू रोग रा लक्षण कारण और उनरा रोकथाम रा कई उपाय।
0: जी बर्ड फ्लू भी एक वायरस होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस, आपने कोविड में भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो, इमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, भी वो बर्ड फ्लू बीमारी फैले, अभी बहुत खतरनाक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इमें भी जी रानीखेत में बताई 100% मृत्यु निश्चित, इरो कोई उपचार नहीं है, इमें मुर्गिया ने मार खड्डे में या कोई सुरक्षित रूप में निस्तारित करनी पड़े। वो रोग मुर्गिया में और टर्की में मुख्य रूप हुए। ई रोग रा लक्षण है कि अचानक ही खूब संख्या में एक ही दिन में एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, अपने समझ नहीं आवेगा यार एक ही दम ही मुर्गियां क्या मरी, पहले कोई लक्षण दिखे को नहीं, एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, पक्षी सुस्त और बिल्कुल खानो पीनो बंद करे और मरना शुरू हो। तो आ स्थिति फार्म में

0: हो जावे। बर्ड फ्लू रो पक्षी में कहीं सूजन भी आ जावे, जुकाम हो जावे, नाक आंख आमू सब वो इस तरह शुरू हो जावे, तो ये सब लक्षण इमो हो जावे। इरो उपचार कोनी बिल्कुल भी और मरना शुरू हो जावे, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैक्सीनेशन इरो उपचार है, वैक्सीनेशन आपने 7-10 दिन में करवाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेर
1: बिल्कुल नुकसान है वैसा। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँ हाँ कि गंभोरो रोग कहीं है और इरा उपचार और बचाव किया कर सका।
0: गंभोरो रोग इरे साइंटिस्ट है एक बारो नाम हो जूलियन गंभोरो।
2: अच्छा।
0: वे ई रोग ने शुरू में स्टार्टिंग में खोज करी, तो बारे नाम वो गंभोरो रोग नाम पड़ियो, तो मैं साइंटिस्ट री वजह ई बीमारी रो नाम गंभोरो। आ भयंकर छूतदार बीमारी है, एक मुर्गी हूँ दूसरी मुर्गी में, दूसरी हूँ तीसरी में, और चूजा में ज्यादा हुए छोटी उम्र में, सामने 2 सप्ताह लेर 15 सप्ताह की उम्र में वो रोग हुए, और तीसरा सप्ताह लेर 7वें सप्ताह में लक्षण बहुत तेजी हुआ हुआ भी में 3-6 सप्ताह की आयु में इनमें एकदम रोग लक्षण जो हुए वे तेजी प्रकट हुआ है। इनमें पक्षी सुस्त हो जावे, भूख री कमी हो जाए, भूख प्यास कम लागे, मारो उत्पादन कम हो जावे, पानी री कमी हो जावे शरीर में, ऐसा लक्षण पंख इमें गंभोरो में पंख बीरा अव्यवस्थित हो जावे थोड़ा।
2: अच्छा।
0: पंख उड़ने में चालने में बीरा बड़ी तकलीफ हुए, पगा में लकवा जिसी स्थिति भी आ जावे, तो है आप पशु चिकित्सक ने जाओ या राजूवास आपने नंबर है टोल फ्री बैठे बात करो, इरो इलाज है, पोल्ट्री फार्म भी राजूवास रो है बैठे भी आप संपर्क कर सके किसान भाई, तो इरो इलाज है। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, 4 वैक्सीन इरे वास्ते है। पहली माइल्ड वैक्सीन है, कम लक्षण आवे तो माइल्ड मतलब माइल्ड वैक्सीन लागू हुए, इंटरमीडिएट वैक्सीन हुए, और इरे अलावा इन्वेजिव इंटरवेसिव हुए, लेयर और ब्रॉयलर के लिए इन्वेजिव इंटरमीडिएट वैक्सीन, और चौथी हुए हॉट स्ट्रेन वैक्सीन, जो अगर एरिया में आपने प्रोन हुए, कई एरिया ये बीमारी के वास्ते प्रोन हुए, तो भी में हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जरूरी हुए, 4 तरह की वैक्सीन कर इरो बचाव कर सका।
2: जी हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तरीके से समझावे नी, तो सवाल भी आपने बढ़िया बढ़िया दिमाग रे मायने आ जावे। तो अगलो सवाल है डॉक्टर साहब आपसे हो है कि फाउल पॉक्स या चेचक रोग रा लक्षण कहीं होया करे, और इन बाबत टीकाकरण की कहीं भूमिका हुए, इन बाबत भी जानकारी दो सा।
0: जी हाँ चेचक आप नाम बतायो, पॉक्स पॉक्स वायरस हूँ वेरा नाम में आ रही होगी पॉक्स, तो पॉक्स वायरस है चेचक जी में छोटी छोटी पुणसियां, जो मनुष्य में चेचक हुआ तो फुणसियां हो जाए, जो इनमें मुर्गी में छोटी छोटी फुणसियां हो जावे जगह जगह पूरे शरीर पर, कलंगी पर, गलकंबल पर, आखरी पुतलिया माथे और सिर माथे फुणसियां हो जावे, तो वही मेन लक्षण है कि फुणसियां अगर आपने दिखे तो आप समझ जाओगे वो फाउल पॉक्स बीमारी है। इनमें संपर्क भी एक मुर्गी दूसरे मुर्गी में संपर्क में आवे तो भी वो एक दूसरे में फैले, मच्छर या पेरासाइट बारे परजीवी आरी वजह भी आ बीमारी हो जावे। अब 3 तरह री हुए, चर्म रूप मतलब चमड़ी में फैलनो, दूसरी हुए मुख रूप, और तीसरी हुए आंखियारो रूप। चर्म रूप में कई हुए कि इमें कलंगी कलंगी माथे चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुणसिया चेचकरी चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर गुदा पर भी हो जावे, तो यहां में हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा 1-2 दिन में पीला रंग में बदल जा, भी आपकी पहचान हो जावे। दूसरो वह मुख रूप, इमें मुंह अंदर झिल्ली अंदर गला तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुए इरो चेचकरो फाउल पॉक्स रो। तीसरो वह आंख रूप, इमें आंखियाओं पलकाओं स्त्राव शुरू हो जावे, सफेद मवाद भी कई बार निकलन लाग जावे।
2: अच्छा।
0: तो वो इरो तीसरो रूप है आंख रूप। ओवरऑल अंडा उत्पादन तीनों ही रूपा में अंडा उत्पादन में कमी आ जावे, आहार प्रति रुचि पक्षी री कौन रहे, ताप टेम्परेचर बिरो बढ़ जा, बुखार टाइप हो जा, और उग्र रूप हो जावे, तो बस पक्षी मरना भी शुरू हो जावे। इमें भी रोग रो बचावी उपाय है, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन।
2: अच्छा।
0: बीमारी होनू पहले वैक्सीनेशन आपने करना होना चाहिए, 6-8 सप्ताह की उम्र में इरो वैक्सीन लागे। अच्छा। वो डॉक्टर साहब संपर्क कर और वैक्सीन लगवानी चाहिए।
1: बिल्कुल साहब बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और अब जो वक्त है बंसी भाई वो है गीतड़ ले लो।
2: बिल्कुल अर्कू भाई
1: है? सुना दू
2: एकदम साहब
1: आप से सुनो भैया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भैया बार आप सुनियो भी एक मीठो मीठो सो गीत रड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह।

0: आठौड़ और आज आप बातचीत करिया मुर्गिया रा प्रमुख रोग रोकथाम रा उपाय विषय पर।
1: डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई जीवारी और पशुवारी सुरक्षा बहुत ही जरूरी हो या करे और मैं चाहे किने भी रूप पारे मायने हो या करे। बात करा जैव सुरक्षा री तो मुर्गिया माए जैव सुरक्षा रो काई महत्व है, इन बाबत आप जानकारी दे सर।
2: बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है। ई में आप सब पक्षियों रो स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखना पड़े, नहीं तो कई तरह रा इन्फेक्शन चूहा अपने पोल्ट्री फार्म में नहीं घुसे, इसका भी विशेष रूप भी आपने विशेष रूप ध्यान रखना पड़ी, कोई तरह रो इन्फेक्शन नहीं आवे। अपने जब फार्म डालते हैं नया तो भी टाइम डालना, जब नया जब चूजा खरीद लावा जठों भी तो वीरो भी आपने ध्यान रखना पड़े कि जठों भी आप ला रहा वो 3 महीना तक या 4-6 महीना तक बैठे कोई बीमारी नहीं आई हुआ, इसी जगह ले रहा हुआ।
1: अच्छा।
2: जी वाहन में आ रहे हो वो वाहन भी
0: साफ
2: सुथरो हुए, तो ये सब चीजा ध्यान रखना पड़े। इमें अंदर घुसनो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड फुट बाथ वगैरह आप अंदर हैंडलर करना वाला वे मास्क वगैरह गम बूट वगैरह वे पैर जावे, ये सब बहुत जरूरी है। तो आऊ बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा आरी मुर्गी फार्म री जरूरी।
0: बिल्कुल सर, कुल मिलाकर साफ सफाई की जी भूमिका है वह महत्वपूर्ण है, और चाहे आवन जावन रो जो भी वाहन है वो हो, चाहे जठे भी पशु दड़बे में रहे, बीरो भी साफ सफाई रो भी बहुत महत्व है।
2: बीरो बीरो लीटर जो आप नीचे बिछड़ो हुआ है बीरो भी बहुत ध्यान रखना हुआ है साफ सफाई रो।
0: पर अब एक डॉक्टर साहब आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि संतुलित आहार और साफ पानी मुर्गियों रोग से बचाने में किन बात सहायक रहे हुए?
2: संतुलित आहार अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हमारे राजू आस में भी है, और जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स है बहु बातचीत कर रही, जब भी आप फार्म डालो पशु फार्म तो वो पूरा प्रोटोकॉल है न्यूट्रिशन रो, चूजाऊ लेर जन्मू लेर और आगे जू जू उम्र बढ़े भी जू, और ब्रॉयलर रो अंडा देवन री टाइम कहीं आहार रहनो चाहिए, क्लाइमेट रे हिसाब भी सर्दी गर्मी में थोड़ो बहुत बदलाव आहार में लानो चाहिए, बारिश रे टाइम में कहीं है बीमारियां वैक्सीन, तो वो सब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है हमारे राजूवास विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सको, और नियर जो नजदीक आप रहे पशु चिकित्सक है वह भी संपर्क कर, और एक प्रोटोकॉल रहे तहत ही आहार देवा, पेयजल भी बहुत सुरक्षित होना चाहिए, अन्यथा ये बीमारियां सकला पशु मुर्गियों आहार इंसान मासी आदमी मासी बहुत खतरनाक रूप भी ले लेवे कई बार, तो आहार और पेयजल रो बहुत संतुलित रूप में ध्यान रखना पड़े। ऑल आउट ऑल इन भी एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मुर्गिया ने एक साथ 2-3 महीना में एक साथ सारी मुर्गियां आपने बेच नयो लोट ले आना चाहिए, लंबे टाइम तक मुर्गियां नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी कर बेचा एक टाइम एक साथ सब बेच दो, वो तो ऑल आउट ऑल इन नियम है, और वापस लाना 3 सप्ताह तक खाली रखो, पहले सप्ताह में भी बीरो लीटर चेंज करो, दूसरे सप्ताह में बीरी दीवारा ये सब डिसइंफेक्टेंट साबुन डिटर्जेंट साफ करो, तीसरे सप्ताह में वहां पर कलर वलर कर, 3 सप्ताह बाद में पाछो दूसरो लीटर लाना चाहिए, तो ये सब भी ध्यान रखकर।
0: कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इन और ऑल आउट ई बात अगर आप ध्यान रखा फिर 3 सप्ताह अपने डॉक्टर साहब बताया, छोटी छोटी बातें हैं पर आप वास्ते बहुत ही महत्व बातें हैं, और इन बातें अगर आप ध्यान रखा तो देखो आप जो इन्वेस्टमेंट के पीसो जी को लगे बेरो अपने अच्छे भुगतान भी होता रहसी, नी जन देखो बीमारी है बड़ी नुकसान दे हुआ करे,
1: और इन नुकसान रो जो बचाव है वो उपचार है।
0: हाँ
1: है, और इन वो क्या करें कि भाई उपचार जो है बचाव जो है वो कौन कर सके जो हो सजग।
0: हाँ,
1: और सजग आदमी जिका करे सवाल।
0: हाँ
1: है, तो देखो सर गौरव भाई है जो कागज में लिखकर भेजे सवाल गौरव
0: भाई
1: कहे कि भाई जे कोई मुर्गी माए रोग रा लक्षण दिख जावे तो मुर्गी पालक है उन्होंने किसा किसा काम है जगह तुरंत करना चाहिए जल्दी सु ताकि उन्होंने जगह मुर्गियां बचोड़ी रहे।
0: बढ़िया सवाल है,
2: बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाई, इस सवाल रो एक मतलब इनिशियल जवाब हो दे कि आपने सब पहले तो जो नजदीकी डॉक्टर है बिकन तुरंत आप टेलीफोन नंबर रखो, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपने कहना फोन नंबर पर पशु चिकित्सक रहना चाहिए, तुरंत संपर्क करो, आप जो भी लक्षण दिख रहा है तुरंत माने बताओ, और अगर वो डॉक्टर साहब बटे विजिट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पक्षी ने पूरा प्रोटोकॉल साथ मारे बैठे ले जाओ दिखा दो लक्षण और जिया बताओ बिया आप ट्रीटमेंट लो, आप हिसाब कोई ट्रीटमेंट नहीं देनो, आप हिसाब ट्रीटमेंट दे तो गड़बड़ आगे और फैल सके वा बीमारी, तो इसो काम नहीं करनो, तो डॉक्टर साहब संपर्क कर, और राजूवास टोल फ्री नंबर है 1800-180-6624 वहां पर भी आप संपर्क कर सको, और धीनेरी बातें टाइम टाइम देखता रहो।

0: तो बाद में भी काफी बातें आप बतावा तो ध्यान रखे पशु भाई, पशुपालक भाई और मुर्गी पालक, तो काफी राहत मिलसी।
1: तो डॉक्टर साहब एक सवाल और दिमाग रे मायने आवे कि भाई टोल फ्री नंबर है उनारे मायने कोई रात बरात भी फोन कर सका की?
0: बिल्कुल, भी तो 24/7 है। अच्छा। लेकिन रात में 9 बजे तक तो हमारे बैठे डॉक्टर भी उपलब्ध रहे।
1: अच्छा।
0: फिर बाद में भी कोई इमरजेंसी है तो निश्चित रूप आपने चाहे 12 बजे भी करनी पड़े तो जरूर आपने उपलब्ध रहे सी। 24/7 सेवा उपलब्ध है राजूवासरी तरफ।
2: गणकरा महाराज का पशुपालक भाई बहन काम में भी लेवे है। ठीक है सर। और अब एक चालती चालती बेला एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि छोटा और मध्यम तबके रा मुर्गी पालका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम रे बाबत आप कई संदेश देवना चाहो सा?
0: बिल्कुल साहब, छोटा मुर्गी पालक भी आपने बैक यार्ड पोल्ट्री फार्म हुआ घर रहे पीछे बाड़ा में भी छोटा बड़ा रूप में नहीं कर सके, छोटा रूप में मुर्गी पालन करे तो बिहार इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप इतना सक्षम नहीं हुआ कि बहुत बड़ा स्तर पर करवा, तो माने वैक्सीनेशन रो जरूर ध्यान रखना चीज है। पशु चिकित्सक आजकल सरकार फ्री वैक्सीनेशन भी कर रही है तो पशु चिकित्सालय में संपर्क कर और वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और बीरे अलावा भी अगर कोई बीमारी आ जावे तो तुरंत पशु चिकित्सकों संपर्क कर और जरूर पशु चिकित्सक होंगे वो आपको उपचार उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर स्वच्छता होगी खान पान उसका न्यूट्रिशन, अभी आप पूछो पहले मैंने खान पान और पेयजल मारो स्वच्छ हो सी एकदम साफ सफाई रहसी और तरीका रखो तो बीमारी आप पर आवे ही नहीं, तो इसको काम ही नहीं पड़े बीमारी रो वो आप ध्यान रखो।
2: तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, फिर बारज करूं कह दे खान पान है और स्वच्छता है, दूसरा है ऐसा कि अपा समय समय पर टीकाकरण करा।
1: हाँ।
2: और समय समय पर अपा डॉक्टर साहब से राय लेता रेवा तो आप जो काम धंधा है वो अच्छो चाली और पशु भी आप वे भी स्वस्थ रहसी। और अब जो वक्त है वो इशारो कर रही है आज्ञा लेवण रो
1: और तो मेरी जी की कदर है और सम्मान है वो तो सकला ने करना ही चीज।
2: बिल्कुल सर। तो भैया मैं आपने बता दू आज आप बातचीत करी मुर्गियारा प्रमुख रोग और रोकथाम रा उपाय इन विषय पर और आज आपने जानकारी देवण सर पधारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आप चौपाल में पधारे और हमारे पशुपालका ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इन सर मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
1: राम राम सा।
0: राम राम सा।
3: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढेनेरी बातें कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं,
6: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस को दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोरो भी कौन।
5: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी पशु कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनन सुनिल सी पशुपालन से जुड़ी सारी समस्या का समाधान
7: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले प्रायोजित कार्यक्रम धीणी री बाता। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की इस दौरान विनिर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया एक रिपोर्ट
1: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत
2: एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है महेश सोबरे आकाशवाणी समाचार पेरिस फ्रांस
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटिक सम्मेलन में शामिल होंगे श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे विवाटिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है प्रधानमंत्री इस समय विवाटिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं आइए सुनते हैं उनका संबोधन
3: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है
4: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा

परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोता कार्यक्रम की शुरुआत में सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर को फिल्म फना में। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने, संगीतकार जतिन ललित। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह से सोनू निगम और मनमोहन वारिस की युगल आवाजों में ये गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार ए आर रहमान।

श्रोता सुन रहे हैं देशभक्ति फिल्म गीत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार।

क्रीडायां चोकोस्लोवाकिया देशः दक्षिण अफ्रीका देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा रात्रौ सार्धनववादने आरभ्यते। पश्चात् स्विट्जरलैंड देशः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ सार्धद्वादशवादने ग्रुप बी क्रीडायां बोस्निया हर्जे

0: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हमने वन रेशन कार्ड तो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे, उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ द को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित

0: अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले तीन दिनों में 1,47,00,000 एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में पीएचईडी और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले एक साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
2: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है, जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों को नीट यूजी 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है।

0: एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएसी जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में यह कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरुवाणी तथा शबद कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशी लाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुंच रही हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के 8 नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों, जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री केके विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालोतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री केके विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई।

0: जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालूतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह बना हुआ है। कुछ समय पहले एक यूनिट में आग लगने के कारण काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब फिर से कमिश्निंग का काम शुरू हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक रिफाइनरी के शुभारंभ की संभावना जताई जा रही है। रिफाइनरी से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर योग शिविर और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है, ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालूतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 ठोणा क्षेत्रीय कार्यक्रम भैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़िया ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख हूं बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 बत्ती परीक्षावा कराई। समाचारा सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत काल करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि पात्र लोगां ने देवेला। इणु नौकरी धंधा रा 15 लाख हूं बत्ता मौका मिलेला। श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओर ओ कार्यक्रम नई दिल्ली माए राख्यो जावेला, जदका देश भर माए 200 ठोणा क्षेत्रीय कार्यक्रम वेला। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार बतायो कि राज्य में यह कार्यक्रम जयपुर समेत 7 ठोड़ा रखा जावेला।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: केंद्रीय उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि खाद्य सुरक्षा तय करण सारू खेतीबाड़ी री उपज बढ़ावण और अन्न ने हिफाजत सागे भेड़ो करनो जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम रा स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम रा उद्घाटन जलसा माए बोल रहा है। वह कहो कि प्रौद्योगिकी काम लेवण अन्न पात्र लोगां ताई पुगावन माए साफ कोई मजबूत भी है। श्री जोशी कहो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

0: ਦਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 98% ਖਾਦਿਆਨ ਵਿਤਰਣ EPOS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਓ ਕਿ ਤਕਨੀਕੋਂ ਇਹ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਏ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਆਖਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੂ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਣੋ ਤੈਅ ਕੀਨੋ ਹੈ।
1: वन रेशन कार्ड, तो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे, उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ई साल भी हज यात्रा ने घनी कामयाब बताई है। वे आज नई दिल्ली में आवता साल री हज यात्रा री तैयारियां सारू बुलाई ची मीटिंग पछे खबर नवी संसा के बातचीत कर रहा है। रिजिजू बतायो कि ई साल भारत ने हज यात्रा सारू सऊदी अरब रा हज और उमराह मंत्रालय री ओरू दो इनाम दिया गया। वे बतायो कि सरकार आवता साल री हज यात्रा सारू नुवी नीति रो ऐलान करेला। केंद्र सरकार चालू माली साल माए गावाई हलका माए 26,000 किलोमीटर उम्बत्ती लंबी सड़का बनावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहला रा तहत आ सड़का सारू 18,900 करोड़ रुपये उम्बत्ती रकम राखी जी है। ग्रामीण विकास विभाग रा सचिव रोहित कंसल रे सदारत माए भी मीटिंग माए राजस्थान समेत 6 राज्यों रा अहलकार शामिल भया। देश माए सगड़ा तेल शोधन कारखाना माए कच्चा तेल रा पर्याप्त भंडार मौजूद है और ए कारखाना पूरा बूताऊ काम कर रहा है। पश्चिम एशिया रा मौजूदा हालात रा बारा माए आज नई दिल्ली माए भी अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता माए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला 3 दिन माए रसोई गैस री 1,47,00,000 टंकियां ग्राहकां ने देरी जी।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियां ने माध्यमिक शिक्षा विभाग माए कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। ई फैसला नौजवाना ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्य में कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचो मजबूत बनावन सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18,86,00,000 रुपये रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। ई रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी माए विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावन और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय माथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला राखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रा तहत कृषि विभाग री ओर डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसानों खेती री कुल जमीन कमो कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष CR चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता था का कहो का इनु किसानारी आमदनी माए बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज

0: राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावन और जमी हेठ पानी रा लेवल माए सुधार सारू जतन करन रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी वे पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया काम माए स्थानीय और हल्का अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विद्यार्थियों ने उजू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा साफ गोई साग करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करन री कोशिशा ने करड़ायों रोकी चावेला। NTA उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 1446 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माय आयोग रा मुख्यालय माय खबर नवीसा ने लारला एक साल माय आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा नी जानकारी दीनी। वे कहो कि आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई राखण और परीक्षावां टेम सर करावण सारू खास कोशिशां कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47 लाख बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 बत्ती परीक्षावां करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हूँ पहली आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योगाभ्यास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा RAC रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास कीनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रहवास माथे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास कीनो। वे लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित राखण री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावणो चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश हूँ पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 24 घंटा माए प्रदेश रा उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बारिश रा आसार है जदका आतुणी हल्का माए कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला माए तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ माए ओला पड़िया। सिख धर्म रा पांचवां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज मारा शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज जी कहा जावे है। इस मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई चिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम राखी चिया। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। PM विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण EPOS मशीनों करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। RPSC लारला एक साल माए 47 लाख बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 बत्ती परीक्षावां कराई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत।

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है, एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है, और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
4: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाला सगला किसान भाई बहना ने भाई तेजे कनिशु
5: और भौरी कनिशु मोकला मोकला राम राम।
4: तो भौरी, आज देखो मौसम भी बरसात आलो हो रही है, और बरसात हुई भी है कई जगह। आन दो चार पांच दिन में जगह जगह माड़ी मोटी बिजाई वाली बरसात हो रही है। तो अगेती बाजरी की बिजाई ही जिकी आप कर सका, और जितेसी मोट मूंग वगैरह बाना चाहूँ तो भी बा सका। इनके अलावा आप एक बात जिकी बहुत ठावड़ी है बा करनी चाहिए कि आप बिजाई पहले आप बातचीत करा करता रोज की बात करा कि भाई जिकी रेत है खेत की भी जांच तो अपन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि खेत की जिकी ऊपरली उपजाऊ माटी है ना, वह ही अपनी फसल के लिए कामयाब चीज है। तो बैंक के लिए अपन आए कि जहाँ टावर के टिक्को लगावन में माटी भी जरूरत हो है, कभी में कौन सी खाद की कमी है, कौन सी खाद गिरनी चाहिए, तो बी को बेरो कहाँ पड़े, बी को बेरो पड़े कि आप जो माटी की जांच करवाओ।
5: बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जो बनावा,
4: कार्ड बनावा जहाँ टावर खातर ममता कार्ड हो ना, भैया मृदा कार्ड है किसान की जमीन को कार्ड, साल में या दो साल में एक बार करवा लेना चाहिए सगली आवड़िया की खेत में, कटी ताली है कटी टाकरो है कटी टिबड़ो है, तो सगली जगह की

0: तो सतीश और साथी की आवाज में गायडिया लोक रचना सुनी, गाजो गाजो जेठ साढ़ कंवर तेजा है। तो बाजरी बीजने को वक्त है जेठ हाली बाजरी, क्योंकि बया तो के हुए के जेठ हाली बाजरी नहीं कही जाए, जेठ लाग रहा हूं लेके रे साढ़ तेने कदी बीज देवे जेठ हाली बोले जाए। देसी बाजरी है जिकी खड़े जा कोने चे बीच में थोड़ी सी जे छांटा छुड़का कम हो तो भी बना को काट दे, पांच सात आंगन छांटा हो तो बाजरी लगा देनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखो
0: हाँ
1: के पहले जेठ में ही है जो लोग बा देता है खेत में, थोड़ी सी बिरखा होता
0: बिल्कुल
1: ही है जो जेठ की बाजरी है जो घेर देता, और जेठ की बाजरी देखो होती भी मोकली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बातरी अपन जे करा के भी किसान कॉल सेंटर है, तो एंक मायने अपन बेहद जानकारी है 1551 कोई मोबाइल मिला दो 1551 ए नंबर मिला के अपन कितनी लंबी चौड़ी बात कर सका, जानकारी ले सका। आपने कोई भी समस्या हुए पेड़ पौधा संबंधित, फूल फाल से संबंधित, सब्जियां संबंधित है, खेती बाड़ी संबंधित, पशुओं से संबंधित, तो किसान है जो आपको कोई मोबाइल हूं लेके ए नंबर दबासी 1551 और बात कर लेची। अब आपन के है कि आपने ही भाषा के मायने अपन उत्तर देसी, अपन समस्या बताशा वह ध्यान सुनसी और ध्यान सुन के अपन भी को निवारण बताशी के भाई आ समस्या है तो इन माँ कौन सी दुआई लगेगी के थाने उपाय करना चाहिए।
1: हाँ
0: इस तरीके की व्यवस्था देसी अपन और अपनी भाषा में देसी। फिर दूसरो फायदो वो है कि मान लो आप खेत में ही बैठे हाँ, अपने कोई मोबाइल ज्यादा चलाने को नहीं आवे
1: हाँ
0: है, वो बतावे दवाई को नाम आप कागज पे ना अपने नाथ को मांडा क्या हूं, तो वह के कृषि के अपन जिकी चीज निवारण बता सी ने कोई दवाई को हो चाहे कोई भी निवारण हो वो SMS के माध्यम से अपने आज से
1: हाँ
0: लिखेड़ो तो भी हिसाब आप वे चीज मंगा के अरबी कमा तरतीब बार कर लिया। अब बैंक मायने के अपन एक काम करा जरूर, देखो राज को बहुत खर्चो लागे, एक कॉल सेंटर में दिन के 6 बजे लेके रात ने 10 बजे तक विशेषज्ञ बैठा रहे
1: हाँ
0: तो कितनी कितनी तनख्वाह सरकार ने देनी पड़े कितने कितने, और तो किसान के अगर ज्यादा से ज्यादा फायदो आके लिए उठानो चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखो एक
0: हाँ
1: मोगड़ो फायदो यो है कि भाई आप कोई भी भाषा में और है जो समाधान पास का
0: बिल्कुल
1: यहाँ को नहीं कि भाई अपन मारवाड़ी आ रही है,
0: हाँ
1: गुजराती आ रही है, कोई सी भी भाषा हो चाहे हर भाषा में है जो को अपने भी को जवाब
0: हाँ
1: मिल जाए।
0: और जद जद समस्या आवे जद जद आप कितनी बात कर लेंगे कि माँ कोई पाबंदी नहीं है, और बड़ा बड़ा विद्वान बड़ा बड़ा इंजीनियर बड़ा बड़ा जका साइंटिस्ट है वे अपनी बात को उत्तर देसी पूरी चीज बता के देसी।
1: बिल्कुल। और देखो को एक
0: हाँ
1: फायदो यो भी है कि आप खेत में बैठे हैं, अपनी फसल का कोई सी कमी दिखे अपन तो हाथों हाथ आप बैठे बैठे ही फोन कर सका।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: और भी फोन को अपन मान लो
0: हाँ
1: जकी भी समस्या अभी को तुरंत है जो अपन समाधान
0: हाँ
1: मिले।
0: अब की एक एम संकोच वाली कोई बात को नहीं, जबकि किसान कॉल सेंटर किसान वास्ते बनेडो है तो बैंक उपयोग अपन करना चाहिए, जानकारी मुफ्त में मिल रही है, शानदार मिल रही है और आ कह करें कि राज की तरफ मिल रही है, तो आ तो है को नहीं कि आप हरेक ने एरे गिर फोन कर ली और बन अपन झूठी साची बता दी जबकि बात हो। अच्छा एम एक फायदा और है बबरी
1: हाँ
0: के आप जो खेत है अपन जटों बात कर रहे हैं बट्ठा को बान पतो लाग जाए कि कौन से इलाकों में बात कर रहे हैं
1: हाँ
0: है ना, तो भी इलाकों में पतो लागे ने जद आपन में बता दे कि भाई थारे इलाके के मायने आ दवाई होसी वो काम होसी वो यहाँ होसी है। इस तरीके की मैं बात रही है जिकी किसान कॉल सेंटर के माध्यम से आपने बता दे। अब की एक थोड़ी सी संकालु प्रकृति का किसान अपन ज्यादा रहे
1: हाँ
0: कह भाई काल बात करी आज उजू के करा दूसरी समस्या आ गई और आ गई, भाई लोकल बताओ खुल के बात करो कह भाई आ दवाई थे बताओ जी की मारे मिलने को नहीं, मारे मिलने वाले दवाई बताओ कठों लियावा है, सही दवाई कौन सी है, क्योंकि आजकल दवाई वगैरह बैंक को भी तो पतो लागना चाहिए ना कि भाई एकदम सही है इस तरीके की दवाई सही हो।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसी चीजें हैं जी पूरी पूरी बात विशेष ज्ञान बता दें वह अपन बता दे। फिर इंक मायने चाहे फल फ्रूट का पौधा हो चाहे फूलां का हो है,
1: बिल्कुल। कोई भी जो नवाचार आप
0: हाँ
1: अपनी खेती में कर
0: कोई
1: रहे
0: का
1: हैं
0: फूल जड़ रहा है कोई का फल लागेड़ा जड़ रहा है कोई के फड़ा में कीड़ा पड़ गया है, कोई के लाग रहा कोनी, तो ऐ सगली समस्या है ने बाकू एकमात्र उपाय है आपने जानकारी लेने वास्ते 1551 1551 ऐ दबाता ही टक देसी आपने कनेक्ट हो जैसी और आपन बातचीत बता सी।
1: बिल्कुल, और देखो के इम है जो को आपनों कोई खर्चो भी कोनी, वो है जो को एकदम फ्री है और आपा कद भी है जो को आपन जेम

0: समय कौन देखणो, इम समय सिर्फ इतो ही देखणो का शाम सुबह 6 बजे लेके 10 बजे तक वो चालू है। और भी के लिए आपा कद भी है जो कोई 6 बजे 10 बजे के बीच में जो को आपनो कॉल करके पूछ सका। हाँ
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो समय थोड़ा सो इतो ही अपन ध्यान में रखना है कि 6 10 बजे तक है।
1: भाई आज वक्त जो को है ना वो धीरे धीरे खेती बाड़ी की तरफ लौट रही है।
0: हाँ
1: है न, तो आने वाले वक्त में खेती बाड़ी जी तो बिजनेस है ना भी, तो और कोई सो ही को नहीं होगा। तो अपन किसान कॉल सेंटर को उपयोग ज्यादा में ज्यादा करना चाहिए। और अब लो सुनो एक डगला राम की गायडी लोक रचना।

0: तो किसान भाई अभी थे डगलाराम पार्टी गाइडिया लोक रचना सुनी इनके साथ ही आज को कार्यक्रम अठाई ताणी रोटी टुकड़ो थे भी कहो और सगला सु सीख लेवा और भौरी सगला सु करा
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

रेखा राव और साथियों को श्रोताओं अभी आपने सुना। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुप्रिया और निर्मल मिश्रा की आवाज में ये राजस्थानी लोक रचना।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के

आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

अंतरालों से पहले श्रोता सुन रहे थे श्रेया घोषाल और साथियों को। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

श्रोताओं ने भी कार्यक्रम के आखिर में सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में गाई ये राजस्थानी लोक रचना सुनी। श्रोताओं, अब राजस्थानी लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी केंद्र चूरू से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोता, कार्यक्रम की शुरुआत में सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म बरसात में। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण। आइए अब आपको सुनवाते हैं।

0: बरसात की बूंदा बांदी।
1: तूफान की सन ये आंधी,
0: दो भीगे बदन,
1: एक टेढ़ी सजन,
0: सोने में ढले जैसे चांदी।

0: शुक्रिया
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं।
4: अंतरालों के पश्चात कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़। फिल्म का नाम है सिंदूर। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म दिल है तुम्हारा से ये गीत। इसे आवाज दी थी अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीत लिखा है समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क

0: राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: रिलायंस फॉर सेल्फ रिलायंस आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोता भी सुन रहे थे समीर के लिखे गीत को, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम अंदाज, आवाजें थी बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाएं मोहरा फिल्म का गीत, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार विज्जू शाह है।

श्रोता कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे निगाहें फिल्म का गीत, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज ने। इसके साथ ही कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 का प्रसारण।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: एआई मस्ट इम्प्रूव लाइफ, वाइडन एक्सेस, ड्राइव ग्रोथ एंड ऑल्सो हेल्प अस सस्टेन अ हेल्दी प्लेनेट। Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड the historic India-EU free trade agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश

0: पिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. and Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
4: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
3: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
4: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
3: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Talking to Akashvani, CMA CGM Chairman and CEO Rodolphe Sardi said, India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding.
5: It's a great honor to meet with the Prime Minister to discuss about our development in India. We have been serving this market for many years and we are looking forward to expanding further. We are developing many initiatives, of which the building of 1700 TEU container in a shipyard in India. So we look forward to not only building those ships, but eventually building even more.
3: Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
6: Addressing the VivaTech Summit in Paris today, the Prime Minister said technology must deliver for all and highlighted India's rapid digital transformation in areas such as financial inclusion, education, healthcare, and agriculture. He noted that UPI now powers nearly half of world's real-time digital transactions and is available in France also. Earlier in the morning, Mr. Modi met top French CEOs, Saint-Gobain, Mistral AI, and CMA CGM leaders, expressed confidence in India's growth prospects and announced plans for greater investments and collaboration in manufacturing, artificial intelligence, and green shipping. The Prime Minister is now attending a grand cultural program, Bonjour Modi, organized by the Indian community at the Sol Pleyel Center in Paris. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Ministry of External Affairs today highlighted the key outcomes of Prime Minister Modi's visit to France. Briefing the media in Paris, Foreign Secretary Vikram Misri said the visit focused on three major pillars: trade, technology, and regional and international security. He said India and France jointly launched the Bharat Innovates initiative in Nice, providing a global platform for Indian deep tech startups. More than 120 Indian startups participated in the program. At VivaTech 2026 in Paris, where India was the AI country of focus, the Prime Minister emphasized a human-centric approach to artificial intelligence and the use of technology for inclusive development. Foreign Secretary Misri also noted progress in trade negotiations with the United Kingdom, Canada, the European Union, and the United States. He said discussions at the G7 Outreach Summit focused on maritime security, the safety of seafarers, developments in West Asia, and enhanced international cooperation on health and economic challenges. Union Minister Amit Shah today chaired a series of review meetings in New Delhi and reviewed national roadmap to strengthen cooperative banking, organic products and cooperative exports. During the review of major cooperative banking initiatives, Mr. Shah took stock of the progress of various measures being undertaken to strengthen the cooperative banking sector through technology adoption, improved governance, cybersecurity, digital payments, common service platforms, and enhanced service delivery. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level review meeting to assess preparations for the NEET UG re-examination scheduled on Sunday.

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका

0: आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। श्रोता सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत। आज आप सुन रहे हैं सुजान सिंह खिंची और साथियों को।

श्रोता अभी सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले कार्यक्रम।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1 लाख रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम

आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में

0: कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये।
1: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया, अभी एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
0: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है
1: कि 1 लाख तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख रुपए तक के ये जो है सो टैक्स
0: फ्री किया था। बिल्कुल।
1: ये देखिए ये दोनों चीजें जुड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है। तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स पे किया गया, कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के दिन।
0: बिल्कुल। जुड़े रहिए आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
2: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स है, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है, हाँ। उन्हें हायर करिए।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज अ फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉइज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉर्पोरेट में गए हैं जो एज एन एम्प्लॉई 6 महीने में, उसके बाद जो राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे लिए एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में मैं इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी, तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉर्पोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
0: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा, यानी जो

0: नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
1: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1,00,000 रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपए मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
0: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए इसके बारे में भी बताएं।
2: धन्यवाद, मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ द प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो AI के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट money over the career, most of them. I would not say all of them, but most of them, they look at hopping from one place to another, looking at their career more rather than sticking to any of the organization. Abhi recently jab se ye Pradhanmantri Rozgar Yojana lagu hui hai, isse hamare jaise employers ko kafi benefit mila hai in terms of hiring the right set of resources and making them stick to the organization. ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है और इसको मैं आई एम ग्रेटफुल टू दी ईपीएफओ एंड दी पीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ आई बीइंग एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ Can we leverage it towards the young generation employment?
0: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से? जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूँ कि देश के योग विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए?
2: जी, सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली एनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब, एंड इट एनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स विद कॉन्फिडेंस। जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउसहोल्ड एंड एवरी हाउसहोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंजम्पशन एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की हमारी कंट्री की कंट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
0: बिल्कुल, आशुतोष जी आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा, कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित।

0: से जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
1: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी नीलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है,
0: बिल्कुल
1: तो ये, और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

0: बेचारी सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
1: जंगल जा रही हूँ दीदी, और कहाँ। इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो, मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
0: पर तू जंगल क्यों जाती है? तेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
1: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं, और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ। अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ेल दूंगी।
0: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच, पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुसीबत में डाल रही है।
1: तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
0: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियाँ बैठती हैं, और वही मक्खियाँ वहाँ से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
1: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
0: ये हुई ना समझदारी वाली बात।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में पहला नगमा हमने लिया है कर्ज फिल्म से। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोता अभी सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का गीत। गीत लिखा था इंदिवर ने, संगीतकार अनु मलिक।

श्रोता सुन रहे हैं गाइड फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजें। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार एस डी बर्मन।

लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों को श्रोता सुन रहे थे हिना फिल्म में। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ गैर फिल्मी गजलें।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र चूरू से ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज आप सुन रहे हैं चंदन दास को।

श्रोता सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे चंदन दास को। श्रोताओं, अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।